आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गिफ्ट्स क्या खरीदने हैं, लंच या डिनर पे कहाँ जाना है, इतना ही हिसाब लगाना है। लेकिन राखी और पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी घर बैठे बैठे, ये सारे आइडियाज मैं दे सकती हूँ। डेफिनेटली मैं आरजे रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई है। एंड एंड मोमेंट वाली जो राखी की शॉपिंग आप करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ज्यादा वक्त वैसे भी नहीं है। बहुत जगह तो इंडिया में 27 और 28 दोनों तारीखों को एज अ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन लिया जा रहा है। बट ऑन दिस थॉट आपको बता दूं, जो भी अर्जेंसी में आपको राखी से रिलेटेड सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, तो राखी पूजा लुम्बा सब की तैयारियां आप कर सकते हैं ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ। ऑनलाइन jyoti.com.sg पर लॉग ऑन करके आप डेफिनेटली ऑर्डर कीजिए। एंड आप विजिट भी कर सकते हैं ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप एट 1 कैंपबेल लेन सिंगापुर। मैं आरजे अनुपम मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
4: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
5: जोश में रहो।
6: बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जिसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स थे और वो सारे सुपरस्टार्स अच्छे लगे एक साथ और वो मूवी भी चली एक साथ, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेंगी, कुछ साल पहले एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी आई थी जिसने आपको हंसाया भी, परेशान भी किया और मजे भी दिलाए। मूवी का नाम था क्या, अंदाज अपना अपना। इसमें आपने सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, किनको नहीं देखा। एंड इन सबकी केमिस्ट्री कितनी शानदार थी, कॉमिक टाइमिंग कितनी बढ़िया थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अपने आप में ये दो पेयर्स ना अच्छे सटीक बैठे थे। लेकिन यू नो व्हाट, ऐसा हुआ था कि सलमान और आमिर खान की लड़ाई हो गई थी सेट्स पर, हाँ जी, किसी बातों को लेकर। और फिर जो है इन चारों के बीच, यानी सलमान, आमिर, रवीना एंड करिश्मा, इन चारों के बीच नोकझोंक हो गई थी और ये चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर फिर भी इन्होंने मूवी में डायलॉग डिलीवरी दी और डायरेक्टर्स ने इनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। नहीं बात करनी है मत बात करो, मेरी बला से टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट हाँ, मूवी के टाइम, एक्टिंग के टाइम, डायलॉग डिलीवरी के टाइम, वो सब के सब एक साथ निकल कर आ जाते थे। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर हम सब भी एक साथ मिलकर एक दूसरे को एंटरटेन ही कर रहे हैं। एंड हम तो मतलब मस्ती मीडिया नेटवर्क तो हमेशा ही आगे रहता है, राइट। सो चलिए बता देती हूँ, हमारे ऐप का नेम बदल गया है, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। एंड फेसबुक पर आप हमें रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क से ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। आरजे नुपुर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।
7: You're tuned into Radio Musti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
8: देखो ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं और वो और ज्यादा फेमस होना चाहते हैं। लोग जब उनके साथ फोटो वीडियो बनवाते हैं तो वो आराम से खड़े रहते हैं, कंफर्टेबल खड़े रहते हैं। और कुछ लोग जो अचानक से फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग जो बहुत वक्त से मूवी भी नहीं कर रहे हैं और कोई उनके पास वीडियो बनाने चला भी जाता है तो भी उनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता है। कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है किसकी? अर्जुन कपूर की। हाँ जी, अर्जुन कपूर जो फिल्मी इंडस्ट्री में तो उतने बेहतर तरीके से नहीं निकल कर आए, लेकिन हाँ, लोग देखते ही उन्हें पहचान लेते हैं और जिनके एक्सप्रेशंस हैं, उनकी बातें हैं, उनको मीम में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? और मुझे लग रहा है कि इसी टॉपिक से ये थोड़े चिड़चिड़े से घूम भी रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली इनका एक फैन इनको स्पॉट करता है और उसके बाद इनकी फोटो वीडियो लेने लगता है। तो ये चिड़ गए, इन्होंने बोल दिया कि क्या कर रहा है भाई, मेरी फोटो लेना, वीडियो क्यों ले रहा है? सो डेफिनेटली इन एक्टर्स के सर पे कांटों का ताज होता है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं। आज से इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: मौका है, दस्तूर है, तो चलिए शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली शॉपिंग के नाम से मेरा तो बुखार ही उतर जाता है। मतलब जब कोई बोलता है ना कि एक ही जगह पर दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी, मतलब सिर्फ फैशन नहीं, फूड भी मिलेगा, होम डेकोर भी मिलेगा, गिफ्ट्स भी मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट आइटम भी मिलेंगे और बहुत सारे गेम्स वगैरह, इंटरेक्शन वगैरह भी रहेगा। तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार, एक तरीके का फैमिली शो हो गया, राइट? सो ऑफकोर्स यार, बिना देरी के बताना चाहूंगी, फेस्टिव बाजार 2026 आ चुका है। माउंटबेटन CCIAEC प्रेजेंट्स आपके लिए ये खास पेशकश। एंड डेफिनेटली इसमें एक मौका और है। देखो 27th ऑफ सितंबर को ये होगा, तो अभी टाइम है, आप डिसीजन ले सकते हो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। और आप एक खुद एक स्टार्टअप ओनर हो, आप लो बजटेड तरीके से एक अपना स्टॉल लगाना चाहते हो, तो प्रीमियम टेबल $100, स्टैंडर्ड टेबल $80 की मिल रही है। सो रिजर्व योर स्टॉल, ऑफकोर्स कॉल करो 8332518 एंड डिटेल्स के लिए go.gov.sg भी लॉग ऑन कर सकते हो। मैं आरजे नुपुर मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डेफिनेटली डोंट गो एनीवेयर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: You know what? Rules बाद में बनते हैं, पर rules को कैसे तोड़ा जाए इसके ideas I think उससे ज़्यादा create कर दिए जा रहे हैं। और इतना ही दिमाग हम लोग किसी और चीज़ में लगाएं तो ज़्यादा best रहता है, हाँ? So Radio Masti 24/7 Life पर मैं आरजे नुपुर दिस साइड। और अगर आपने भी कभी कोई rule तोड़ा है और उसका मलाल और उसका guilt आपके मन में या चेहरे पर नजर नहीं आया है तो कैसे इंसान हो आप, कुछ तो गड़बड़ है यार। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में एक ऐसा ही केस निकल कर आया। एक 15 साल का अंडर एज बच्चा कह लो आप, लड़का कह लो आप, वो गाड़ी चला रहा था और उसकी मॉम और उसका छोटा जो कजिन है या भाई है, व्हाटएवर है ना, छोटा बच्चा भी था उस गाड़ी में। और जब उस 15 साल के लड़के ने वो गाड़ी किसी और की गाड़ी में भेड़ दी और वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो जो उसकी मॉम थी वो बल्कि अपने 15 साल के बच्चे को डिफेंड कर रही थी कि गलती सामने वाले की है, उसकी नहीं। ओ माय गॉड। तो मतलब यहाँ पे बहुत कुछ बेसिक थॉट्स जो है, बेसिक रूल्स जो है एंड बेसिक डिसेंसी जो है वो सब मिसिंग थी और ये चीज सोशल मीडिया पर निकल कर आ गई। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें करेक्ट होने का वक्त आ चुका है, वो होता है ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, मिल जाए।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: बहुत सारे एक्टर्स की लिस्ट है, मतलब कुछ तो आपके मुंह जुबानी याद होंगे आपको और कुछ आप देख के पहचान लेंगे, और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो होते तो हैं एक्टर्स, वो ना तो सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, पर उनका रोल बहुत बड़ा होता है। पर अगर मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे एक सवाल पूछे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मेरा होगा मनोज बाजपेयी। हाँ जी, हमारे मतलब ऐसे सिलेक्टिव मूवीज करने वाले जो एक्टर्स हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े डिसेंट लगते हैं। जमीन से उठे हुए लोग तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। सो डेफिनेटली अगर मैं मनोज बाजपेयी की बात करूँ तो अब ये क्या नया करने जा रहे हैं, हाँ जी बता देती हूँ, 21 क्रूशियल डेज करके जो मूवी है, मतलब नाम कुछ और हो सकता है लेकिन वो जो 21 क्रूशियल डेज रहे हैं ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसके पहले के, उसके दौरान और उसके बाद, कुल मिलाकर उस दौरान क्या हुआ है, ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई जाएंगी। और महात्मा गांधी जी का जो किरदार है वो कोई और नहीं मनोज बाजपेयी निभाने वाले हैं। लेट्स सी ये कैसा निकल कर आता है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

क्या बात है, क्या बात है। इस बार तो सिंगापुर में बैठे बैठे आपको इंडिया की याद आ जाएगी। डेफिनेटली मैं आज अनुपम मसीह मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि जब भी हम इंडिया से दूर रहकर कोई इंडियन त्यौहार अपनी तरह से फैमिली के साथ इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसे खास बनाने का काम पता है कौन करता है? ज्योति स्टोर एंड फ्लावर शॉप। एंड इस बार गणेश चतुर्थी आने को है और अभी भी आपने गणपति जी की प्रतिमा को बुक नहीं किया है तो 10 इंच के जो गणेश जी के आइडल्स हैं उसमें आपको n नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। डेफिनेटली मतलब अलग अलग, वो कहते हैं ना, खूबसूरत कलर के जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और उनके गले में आपको बहुत ही खूबसूरत सा हार दिखाई देगा, उनकी सूंड का डायरेक्शन जिस तरह से आपको चाहिए वो दिखाई देगा, उनके आसपास मोदक है, वो खुद चूहे की सवारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरियंट आपको प्रतिमा के मिलने वाले हैं। सो 14th ऑफ सितंबर को गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने से पहले अपने गणेश जी के आइडल्स जरूर बुक करके आएं। इसके लिए पहुंचिए ज्योति स्टोर, जो डेफिनेटली ऑनलाइन तो अवेलेबल है, एंड आप विजिट कर सकते हैं 21 कफ रोड सिंगापुर। एंड डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए 8242416। मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: अरे अरे अरे अरे मतलब ये जो टॉपिक है वो हर रोज निकल कर आ रहा है, पॉप अप कर रहा है और मैं आपको बताए बिना रह नहीं पा रही हूँ। सो डेफिनेटली मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। चलो भाई, आपको आधे से ज्यादा तो पता ही होगा कि गोविंदा और उनकी वाइफ जो है सुनीता आहूजा, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। पर आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? देखो, हमने तो हाफ हाफ सबकी बातें सुनी है, अब रियल में रीजन क्या है ये समझ में नहीं आता। पर हाँ, पुराना एक इंटरव्यू जरूर पॉपअप हुआ है गोविंदा का, जिसमें गोविंदा ने बोला है कि जो गोविंदा की माँ है उन्होंने पहले ही गोविंदा को अलर्ट कर दिया था कि तुम्हारी बीवी सुनीता जो है ना वो नॉर्मल लड़की नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है और अगर तुमने इसे धोखा दिया, अगर तुमने इसे परेशान किया तो तुम गरीब के गरीब रह जाओगे। और ये चीज जिस तरह से निकल कर आई है, ओह माय गॉड। एंड आपको तो पता ही होगा सुनीता यानी कि गोविंदा की जो वाइफ है उन्होंने डिवोर्स पिटीशन भी विदड्रॉ कर लिया है। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्हें डाउट है कि गोविंदा किसी और से शादी करने वाले हैं। आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज दिमाग का चक्कर बाबू भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपका दिल कितना सेंसिटिव है, हाँ ये मैं जरूर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ फुर्सत से बैठकर। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। भाई, आपके दिमाग को और ज्यादा पॉसिबली अलग तरह से पढ़ने के लिए, मेंटलिज्म दिखाने के लिए सुहानी शाह जो है वो अपना लाइव शो सिंगापुर में ला रही है, स्पेल बाउंड, एंड डेफिनेटली यू कैन अटेंड इट और आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। टिकट्स हैं सिस्टिक सिंगापुर पे अवेलेबल, एंड 20th सितंबर इज द डेट, संडे वाला दिन है। 6 PM ऑनवर्ड्स आप अटेंड कर सकते हैं क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर, 30A क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर। आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, आपको ना किसी भी चीज और किसी भी इंसान और किसी भी सिचुएशन को अंडररेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब हम किसी चीज को अंडररेट कर देते हैं और वो पूरे के पूरे शब्द बोल देते हैं ना जो नहीं बोलने चाहिए, वो एक्चुअली में आगे जाकर उल्टी तरीके से, मतलब ऑपोजिट वे में और ज्यादा सच हो जाते हैं और जैसा आपने सोचा भी नहीं होता है उससे भी बेटर। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एक्टर्स से कंपेरिजन चलता रहता है, फिल्मी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कॉम्पिटिशन चलता रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना सोशल मीडिया की वजह से पुरानी चीजें कभी भी वायरल होकर उठकर निकल आती हैं। सो एक ऐसी क्लिप निकल कर आई है सलमान खान की, जिसमें वो होस्टिंग के दौरान इमरान हाशमी के लिए कह रहे हैं कि ये बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है, मतलब इनको जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। हाँ, सो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बातें जो है ना, वो ऐसे ऐसे मैच खा रही थी। लेकिन अभी इमरान हाशमी का जो करियर रहा है, उनकी जो छाप रही है, उनकी जो पहचान रही है, वो लोगों ने बहुत पसंद करी है। और वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी बहुत शानदार रहा है। और रिसेंटली इनकी आवारापन 2 मूवी जब निकल कर आई ना, तो उसने 100 करोड़ का क्लब जिस तरह से ज्वाइन किया, वो उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे सुपर फास्ट रहा है। सो वो, मतलब वो कहते हैं ना, अंडर रेटेड से टॉप रेटेड या एक्सट्रीम अलग तरह से निकल कर आना, ये कोई इनसे सीखे। सो डेफिनेटली इमरान हाशमी के साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स इस साल ना एंट्री लेने के कगार पे हैं। बट हाँ, आपको ये नई बातें तो पता चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक नई बात ये है कि हमारा ऐप का नेम बदल चुका है, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। फेसबुक पर आपको हम मिल जाएंगे रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। डू फॉलो अस रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एंड योर फैमिली।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
3: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट आउट
1: दे आर फ्रेश They are

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

Welcome to your zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस डियर मस्ती, दिल से।
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे
3: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स सर्व्ड हॉट एंड बैक टू बैक।
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
2: आइए आइए भाई, कैसे स्वागत करें आपका आज के इस खास खास कार्यक्रम पे कि भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, ऐसा मेरी माँ गाया करती थी व्हाइल वी यूज्ड टू टाई राखी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s बिग स्टेप। यस, ये शो हो चुका है शुरू, और क्योंकि कल राखी का दिन है, और अगर जस्ट इन केस आप ऑन कोर सुन रहे हो तो शनिवार हो चुका है और हम जस्ट अभी ये जो शुक्रवार को राखी का टाइम गया है तो हम उसकी यहाँ पे आज मतलब माहौल फेस्टिवल के हिसाब से बनना चाहिए ना। अब क्या करें जब इतनी सारी बातें होती है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मस्ती 90s मिक्स टेप, मेमोरीज के और यादों के वो दरवाजे यूं ही खुल जाया करते हैं एंड यूं ही फर्राटे से बाहर आते हैं कि ओहो ऐसा ही हुआ करता था। नहीं, सो वेल, आज के मस्ती 90s मिक्स टेप में भी कुछ रक्षाबंधन का ही फ्लेवर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि राखी बांधते वक्त जो है उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि गाने वाने चला दो, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइब बनाओ, माहौल बनाओ। भाई माहौल जो है फेस्टिवल्स के टाइम पर 90s में कई दिनों पहले से ही बनना शुरू हो जाता था, बी इट लाइक राखी ओनली जो कि हमें पहले से ही खरीद, आजकल कभी कभी ना डेट मिस हो जाती है कि और इस बार जो है राखी थोड़ी सी जो है मेल में पहुंचेगी जरूर, लेकिन थोड़ी लेट पहुंचेगी। क्या बट क्या दिन थे वो यार, लाइक सच्ची में नॉट ओनली आई क्रेव फॉर द फेस्टिविटीज अराउंड द हाउस 90s के टाइम पर, बट ऑल्सो द पकवान विच यूज टू यू नो कम अलॉन्ग विद इट। और हम लोग वेट क्या करते थे, बिकॉज इट जस्ट मेड एंड एलिवेटेड द होल थिंग सो वेरी मच। आजकल क्या है कि भाई तू बता क्या खाएगी, अभी तेरे लिए ऑर्डर, या कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तब भी था, बट आई थिंक उस टाइम पे वैल्यू इस चीज़ की ज़्यादा थी क्योंकि बहुत कम मिला करता था, बट कम में बहुत सारा खुशी का एहसास हो वो है वो 90s वाले दिन। सो वेल, शुरू तो यहाँ पर हो चुका है, आप बिल्कुल पेटियाँ बांध ले, 90s के सफर में चलते हैं साथ साथ और मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। मैं हूँ आपकी 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। और आज जो है मस्ती 90s मिक्स टेप, यहाँ पर शुरू करते ही मेरे को आया था कि यार राखी के बारे में तो बात करने लाइक नॉट द मैं राखी सावंत हूँ, नो नो, ना ही मेरे करण जुड़ाएंगे धरती का सीना पर, नो नॉट दैट वन एज वेल। दिस इज द रक्षाबंधन और वो जो त्योहार एंड द त्योहार की फीलिंग। अच्छा, 90s वालों ये बताओ, आज राखी कोरियर करनी हो तो ट्रैकिंग लिंक खोलो, डिस्पैच दिखा रहा है कि नहीं, इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, लाइक ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। But now let's go to the 90s का time, right? राखी envelope में डाली और उसके बाद उसको post करना पड़ता था। उसके बाद status था भगवान भरोसे। Seriously, अगर भाई बहन या cousins दूसरे शहर में रहते थे तो रक्षाबंधन की preparation काफी पहले से ही start हो जाती थी। मम्मी जो है, मैंने बताया ना, एक बड़ा सा calendar जो है वो बड़े बड़े पन्नों वाला, उस पर हर चीज लिखी होती थी एंड इट यूज टू बी इन आर डाइनिंग रूम, जहां पर यूजली सब खाना खाने के लिए बैठते थे। Why? Because नजर सीधा उसमें पड़े तो समझ में आ जाए कि भाई ये वाला त्योहार आने वाला है। फिर उसके बाद राखी के लिए मार्केट जाओ, वहां पे राखी चूज करो और साथ में वो 90s वाला एक ग्रीटिंग कार्ड। पहले उसमें ना फ्रंट में बहुत सारे फ्लावर्स बने होते थे या क्यूट सा टेडी बना होता था और शाइनी गोल्डन लेटर्स में लिखा होता था फॉर माई डियर ब्रदर एंड अंदर प्रिंटेड होता था इमोशनल लाइन्स, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब वो देखता भी नहीं था उसकी तरफ। फिर उसके बाद ऑफकोर्स हैंड राइटिंग में अपने लिखना पड़ता था लॉट्स ऑफ लव या फिर डेट, फिर नाम और कभी एक छोटा सा स्माइली जो बिल्कुल स्माइली जैसा नहीं दिखता था। फिर राखी को केयरफुली कार्ड के अंदर उसको रखना, उसके बाद अगर तो बाहर भेज रहे हो तो एनवेलप में डालना, एड्रेस लिखना एंड ये सारी चीजें हमारे जो पिताजी हैं वो पूरा ही अपने कहते कहते सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में जाकर अगर आपको ये अपना राखी भिजवाना भी है देन यू शुड नो हाउ टू डू इट। सो आई टू सेंड इट टू माई बुआ के बेटे एंड बाकी जितने भी मेरे कजन्स हैं सबको मैं भेजा करती थी। सो वेल, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो सीखी। और पिन कोड कन्फर्म करने के लिए घर में तीन लोगों से पूछना जरूर कि ये यही वाला है ना, है ना, यही वाला है ना, स्टैम्प किधर लगेगा, इधर लगेगा, उधर लगेगा। एनवेलप जो है पोस्ट होता था, उसके बाद शुरू होता था असली सस्पेंस कि एसटीडी करके पहले तो इन्फॉर्म इतला कर दिया जाता था कि भाई आएगी, उधर भी इंतजार चलता था कि भाई उसकी तो मतलब अभी तक इसकी राखी नहीं आई। और फिर उसके बाद जैसे ही मिल जाती थी तो कॉन्फर्मेशन कॉल लैंडलाइन पे ही आता था कि भाई राखी मिल गई। हमको लगता था वाह ये क्या मैजिक है, हमने इधर से भेजा वहां पे उनको मिल गया, ये तो बहुत ही कूल हो गई बात। 90s का कूल भी कुछ इसी तरह सा था। सो वो सेंटेंस ही हमारा डिलीवरी नोटिफिकेशन था कि मिल गई राखी, और अगर नहीं पहुंची तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने कहा था कि इसको जल्दी भेज दिया करो तुम लोग, कोई लास्ट मिनट में कर। आजकल तो कितना कूल है यार, सेम डे डिलीवरी है, देन डिजिटल शगुन जो है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, वीडियो कॉल से आप कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज फास्टर, इजियर एंड ट्रैकेबल एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, लेकिन वो हैंड रिटन एनवेलप वो एक अजीब सी ही वार्म्थ थी। ये जो खुद जाते थे हम लोग राखियां चूज करते थे, घर में माहौल के साथ राखी जो बांधी जाती थी, टीका लगाया जाता था एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी बात ही कुछ और थी। नहीं, 90s के वो अमेजिंग दिन, जी हाँ, आज राखी का दिन याद कर रहे हैं।

0: साल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वो बात कर रहे थे ना कि रक्षाबंधन में ऑनवलप हम लोग पोस्ट करते थे एंड सारा का सारा प्रोसेस हमें उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन इसी तरह से हमारे पेरेंट्स जो है हमको सिखाया करते थे कि सब कुछ आना चाहिए। बाय द वे, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूँ अंतरा, यहाँ पर आपके साथ 90s वाली। अब मान लीजिए आपके नाम का ऑनवलप आया है, ठीक है, उसमें से राखी निकली, ग्रीटिंग कार्ड निकला और कार्ड खोलते ही अंदर से करके कुछ नीचे गिरा। वो क्या था? 11 रुपए का नोट या फिर 21 रुपए का नोट। उस टाइम पे इतना ही बहुत सा था, 51 होता था तो लोग सोचते

लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा ही कर दिया तुमने, और 101 तो मतलब गजब ही कर दिया, करोड़पति समझ लो अपने आप को। सो या इस तरह की चीजें हुआ ही करती थी, और आप स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से सेट कर लिया करते थे। बस 90s के बच्चों के लिए ये कोई रैंडम अमाउंट नहीं था, दिस वॉज अ सीरियस वेल्थ। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जैसे शगुन का अमाउंट का अपना ही चार्म था, राउंड फिगर नहीं, 1 रुपया एक्स्ट्रा। वो वाले एनवेलप याद है जिसमें बाहर जो है 1 रुपए का सिक्का ऑलरेडी चिपका हुआ आता था, बस बाकी का नोट जो है वो अंदर ही रखना है। हम बच्चों को फिलॉसफी से क्या लेना देना, हमें तो पैसा चाहिए। जब ऐसे आते थे नोट यार, मम्मी पहले तो ले जाया करती थी, फिर थोड़े बड़े हुए तो उनको हम पे दया आ गई कि नहीं दे ही दो यार, मतलब पॉकेट मनी क्या बार बार हम देंगे, यही समझ लो तुम्हारी पॉकेट मनी है। एंड देन वी यूज्ड टू इमेजिन कि इसमें क्या क्या आ सकता है, 10 रुपए में टॉफीज कितनी आ जाएगी, कॉमिक्स आ जाएगी, चिप्स आ जाएंगे, ऑरेंज बार आ जाएगा, ये सब सेव करके नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे सेफ रखने कहाँ है, वॉलेट तो था नहीं, तो कभी पेंसिल बॉक्स के सीक्रेट कंपार्टमेंट में, कभी कबर्ड के अंदर, कभी अपने गुल्लक में, कभी किसी बुक के पेजेस के बीच में, और फिर खुद ही भूल गए कि रखे कहाँ, अचानक से फिर सरप्राइज विजिट मिलता था खोल के, ओ अच्छा आज तो हम रिच हो गए। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक और सीन होता था, आपको शगुन मिला, आप क्वाइटली काउंट कर रहे हो और मम्मी की नजर पड़ गई कि कितने मिले, बस अब सडनली फाइनेंशियल प्राइवेसी इज अंडर थ्रेट, कुछ नहीं बस 21 इधर दो मैं संभाल के रख देती हूँ। नहीं, 90s के बच्चों को सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस की मम्मी संभाल के रखेंगी का एक्चुअल मैच्योरिटी डेट ये कब है, अगर बता देती तो बात ही क्या थी। और कजन्स के बीच कंपैरिजन भी काफी सटल बिल्कुल नहीं था, तुझे कितने मिले, मुझे 51, व्हाट तो मुझे किस क्यों मिले। बट फनी ना, अमाउंट कितना छोटा था फिर भी एक्साइटमेंट कितनी बड़ी, बिकॉज अपने पैसे होने का फीलिंग ही डिफरेंट था यार। आज एक टैप पे मनी ट्रांसफर हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, अमाउंट जो है अकाउंट में आ जाता है, कन्वीनियंट एब्सोल्युटली। लेकिन वो एनवेलप खोलना, नोट का कॉर्नर देखना, उसे निकालना, सीधा करना, तुरंत फ्यूचर प्लानिंग शुरू करना, दैट वॉज अ लिटिल रक्षाबंधन जैकपॉट। 90s में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं था बॉस, 21 रुपए थे और सपने अनलिमिटेड। स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: September 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre. Hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious. Leave spellbound with Suhani Shah.
1: How do you know these things? Stop reading my mind.
2: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना।
3: आइए, आपका इंतजार था रेडियो मस्ती 24/7। यस, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ यहां पर। एंड यस, रक्षाबंधन की बात हो रही है, बिकॉज यार फेस्टिवल के टाइम पे 90s वाली मेमोरीज उस फेस्टिवल को लेकर नहीं ताजा करे तो कैसे बिल्कुल बनता है। सो 90s में रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ सुबह राखी बांधी, मिठाई खाई एंड डन बिल्कुल भी नहीं था बॉस। अगर आपके कजिन सेम सिटी में रहते थे तो राखी का दिन बेसिकली एक फुल फैमिली टूर पैकेज के साथ आता था कि सुबह जो है घर वालों ने अनाउंसमेंट की कि जल्दी रेडी हो जाओ, तीन जगह जाना है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली हमको जाना है अपने कजन्स को बांधने, मम्मी के भी जो मुंह बोले भाई हैं और जिनको वो मानती हैं तो उनको भी उन घरों पे जाकर जो है अपनी राखियां बांधनी है। तीन, और वो तीन जो है शाम तक जो है, पांच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पर, बट हमारे दिल में जगह इतनी थी कि हम चले। तो मैं कह रही हूं ना कि 90s में त्योहार वाज सम अलग, एंड दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू वेट फॉर दीज फेस्टिवल्स, राइट। सो सबसे पहले जो है नानी या दादी के घर, वहां पे कजन्स ऑलरेडी आपको रेडी मिल जाया करते थे, फिर राखी, फिर तिलक, फिर मिठाई, फिर शगुन, बहुत सारी मस्ती। और जैसे ही बच्चों ने प्रॉपरली खेलना स्टार्ट किया, नहीं वहीं पे मम्मी पापा ने बोला चलो लेट हो रहा है, अभी अगले घर जाना है। एंड वी यूज्ड टू बी लाइक मम्मी प्लीज थोड़ी देर और यार, थोड़ी देर और। फिर सब कोई अपने स्कूटर पे, हमारे उस टाइम पर जो है ESD थी डैड के पास, तो उस पे बैठकर जो है टंकी पे बैठकर जाते थे वहाँ पे। एंड एक बच्चा मम्मी पापा के बीच में पीछे की तरफ बैठ करता था, एंड एक एडजस्टमेंट जो है वो चलती रहती थी। वो कानपुर में इतने गड्ढे थे रोड में, वो ऐसे ही एडजस्ट हो जाया करते थे, दे यूज टू काइंड ऑफ हेल्प अस। सो 90s फैमिली लॉजिस्टिक्स को Absolutely, मैं तो सल्यूट करना चाहती हूँ। या फिर अगर आप मारुति 800 के टाइम को याद करो तो उसमें पूरा खानदान आप उसमें भर सकते थे, लाइक खानदान। आई हैव सीन मारुति 800 स्टफ्ड विद आई डोंट नो मोर देन 15 पीपल एट वन पॉइंट। सो बट एनीवेज, राखी की थाली, मिठाई का डब्बा, गिफ्ट का पैकेट, और पीछे हम कजिन्स को लेकर डिस्कशन की आप किसके घर जाना है, पहले बुआ के यहाँ पे, नहीं वो लंच के बाद घर पर मिलेंगी। हर घर पहुँचते, अरे आ गए, आओ आओ आओ आओ। फिर और उस टाइम पे क्या था, आवाज़ लगा के एक दूसरे को बुलाया जाता, अरे सुन रहे हो, आ गए हैं ये लोग। फिर वही रिचुअल, लेकिन घर घर का एक अलग फ्लेवर हुआ करता था और अलग खाना भी। कहीं समोसे रेडी होते थे, कहीं पूरी सब्जी खाने को मिलती थी, कहीं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कहीं मिठाई, और कहीं पे कुछ भी नहीं, नट्स देकर हमको बाय बाय टाटा कर दिया करते थे। एंड मतलब एक पॉइंट ऐसा आता था कि मम्मी जब बोलती थी कि बस थोड़ा सा ही लाना, अभी और भी आगे दूसरे घर जाना है ना, तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड यस, 5 मिनट्स लेटर वी आर स्टिल सेवरिंग एंड रिलिशिंग दैट गुलाब जामुन विच केम, बिकॉज ये खाना कौन छोड़ता है यार, कौन छोड़ता है बताओ, हम तो नहीं छोड़ते थे। सो राखी वॉज वन ऑफ दोज डेज वेन कजन्स होम यू डिडंट इवन मीट, हर हफ्ता सब एक एक करके मिल जाते थे। किसी के घर लूडो खेलने चले गए, किसी के छत पे चले गए खेलने के लिए, कहीं पुराने टॉयज मिल गए, और हर जगह निकलते वक्त कि भाई नेक्स्ट टाइम, अगली बार थोड़ा और समय लेके आना, देन अगेन ऑफ टू नेक्स्ट स्टॉप। आज फैमिली डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्केड्यूल्स में है, वीडियो कॉल पर राखी भी काफी अच्छी लगती है, इट्स ओके, कुरियर से गिफ्ट्स भी पहुंच जाते हैं, बट 90s के वो राखी के राउंड्स, स्कूटर की राइड्स, मिठाई के डब्बे में यू नो बहुत ही यम है, मुंह में पानी आ रहा सोचे, देन मम्मी का जल्दी करो, और एक ही दिन में आधी फैमिली से मिल लेना, उसकी थकान भी एक मेमोरी ही तो है और उसकी खुशी भी। रात को घर लौटते जब हम थे टोटली एग्जॉस्टेड, बट या पॉकेट में थोड़ा शगुन, पेट में दुनिया भर का खाना और हाथ में राखियां, पूरा खानदान यू ही सिमट के एक दिन में आ जाता था। Stay tuned to Radio Masti 24/7, Masti 90s mixtape, आप सुन रहे हो अल्ट्रा के साथ।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: तेरे को बहुत मजा आता है ना सीधा साधा लोगों को फूल करने में?
2: तू भी तो उसको फूल करती है, लव मेरे को करती है और घूमने को उसके साथ जाती।
1: Oh shut up! एक दिन गॉड तुमको बहुत पनिश करेगा। क्या हुआ?
2: You are right. चींटी बनकर काटा।
1: Chewing.
2: Punishment over. ए, अभी चलना, काय को इतना भाव खाती है? आ, लव यू यार।
1: तू ऐसा कितनी लड़कियों को बोला?
2: हाँ, सिर्फ तेरे को सैंड्रा। I mean, सुजी। सिर्फ तेरे को रोजान, मेरी लैला।

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: यार राखी के टाइम पर 90s में रक्षाबंधन में शॉपिंग करने जाना भी फेस्टिवल का ही पार्ट माना जाता था, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप। आज रक्षाबंधन की वो जो दिन है 90s वाले उसको याद कर रहे हैं हमको। सो आज क्या होता है, फोन खोलो, स्क्रोल करो, यू कैन फिल्टर इट बाय प्राइस, यू कैन फिल्टर इट बाय कलर, यू कैन ऐड टू कार्ट एंड इट इज डन। तब पहले बोला जाता था चलो भाई आज मैं जल्दी आ जाऊंगी ऑफिस से, फिर राखी लेने मार्केट जाएंगे। ये जो सिंपल लाइन होती थी ना कि आज तो मार्केट चलेंगे, एक्साइटमेंट ना हमारी 90s में इसी में आ जाया करती थी। मार्केट पहुंचते ही दुकान के बाहर से ही पता चल जाता था कि राखी का सीजन ऑन है, क्योंकि सामने लगे होते थे वो बड़े बड़े कार्डबोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड्स। और दुकानें क्या करती थी कि अपना दुकान एक्सटेंड कर लिया करती थी, बाहर जो है लकड़ी के टेबल्स लगा लगा के जोड़कर उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का शीट बिछाते थे और उसके ऊपर वो लोग सारा राखी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किया जो है सजा के रखते थे, ताकि लोगों की मतलब गली में घुसते ही नजर सबसे पहले उस पे पड़े। और उनके ऊपर और क्या क्या काफी सारे गिफ्ट वगैरह भी जो है वहीं पे बिल्कुल रखे जाते थे, रेशम के धागे वाली राखी। ओहो हो हो, हम बस उसको देखते थे, उठाते थे और वापस रख देते थे क्योंकि बहुत महंगी मिलती थी। सो या उस टाइम पे नहीं खरीदते थे। एंड फिर वो बीच में शाइनी स्टोन वाली भी बड़ी ट्रेंड की थी 90s के टाइम पे, बच्चों के लिए कलरफुल वो कार्टून वाली राखी, किसी में टाइनी बीड्स, किसी में इतना डेकोरेशन कि रिस्क पर मानो तो हाथ से बड़ी तो वो राखी हुआ करती थी। रिमेंबर दोस रियली ह्यूज ह्यूज राखीज, और वो गोल्डन कलर के फॉइल टाइप की एकदम पूरा सर्कल में बाहर आता था। हमारा शॉपिंग का टेक्निक ऑनलाइन भाई कोई कैटलॉग नहीं हुआ करता था 90s में, पूरी वॉल ही कैटलॉग और वो पूरी टेबल ही कैटलॉग होती थी। उंगली से पॉइंट किया भैया वो वाली दिखाना, शॉपकीपर बोर्ड से वो राखी निकालते थे, हाथ में उसको लेकर देखो, नहीं दूसरी वाली, फिर दूसरी निकली, इसमें कलर अच्छा नहीं था, फिर तीसरी, वो ऊपर कॉर्नर में गोल्डन वाली है ना, बेचारे शॉपकीपर भैया। एंड फिर इतनी देर से देख रही हूँ, कोई तो पसंद करो, चूज कर लो, लेकिन राखी चूज करना वॉज अ सीरियस बिजनेस राइट, बिकॉज हर सिबलिंग के लिए सेम राखी थोड़ी ना चलेगी, एक के लिए सिंपल, एक के लिए थोड़ी स्टाइलिश, छोटे कजन के लिए थोड़ी सी फन कार्टून वाली, किसी स्पेसिफिक सिबलिंग के लिए नहीं, उसके लिए कुछ अच्छी वाली दिखाओ यार, ये वाली नहीं चलेगी। फिर सिलेक्टेड राखियाँ काउंटर साइड पे जो है रखी जाती थी, शॉपकीपर भैया जो है उन्हें छोटे ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में डालते थे और हम एक बार फाइनल इंस्पेक्शन जरूर देख लेते थे, कर लेते थे कि सब आ गई ना। मार्केट में उस वक्त एक अलग ही फेस्टिव एनर्जी हुआ करती थी, राखी के स्टॉल्स, मिठाई की दुकान, गिफ्ट शॉप्स, पीपल आर कैरिंग पैकेट्स, कलर्स एवरीवेयर। यू डिडंट जस्ट बाय फॉर अ फेस्टिवल, यू वेंट आउट एंड फेल्ट इट अराइविंग, एंड परहैप्स दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन शॉपिंग कैन नेवर नेवर कंप्लीटली रिक्रिएट। कन्वीनियंस एब्सोल्युटली, चॉइस अनलिमिटेड, लेकिन 90s में उस क्राउडेड मार्केट में खड़े होकर 100 राखियों में से एक को पॉइंट करके कहना कि भैया बस वो वाली पैक कर दो, उस सिलेक्शन में भी थोड़ा सा प्यार बंधा होता था दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप का सिलसिला दोस्त यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाओ, स्टे ट्यून्ड।

0: स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइक की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आमिर खान wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
4: सलमान खान wanted answers.
6: कैसे किया ये?
4: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
4: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
4: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
4: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: आइए जी आइए, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आज राखी का त्योहार जो है, रक्षाबंधन का त्योहार, उसकी यादें ताजा की जा रही है। आई थॉट फेस्टिवल है भाई, 90s से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो 90s में अगर सिबलिंग या कजन दूसरे शहर में अगर रहता था तो रक्षाबंधन के दिन आप उन्हें ऑफकोर्स देख नहीं पाते थे, राइट? क्योंकि फेस टाइम नहीं है, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल नहीं है, फोटो इंस्टेंटली भेजने का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आवाज का बहुत ही इंतजार होता था, फोन की घंटी का। आई हैव सीन माय डैड वेटिंग फॉर इट। बुआ कोलकाता में थी तो वहां से आता था ट्रंक कॉल लगा के। सो राखी के कुछ दिन पहले पोस्ट कर दी गई राखी, ठीक है। अब घर में एक ही सवाल कि भाई पहुंच गई होगी कि नहीं। हम भी भेजा करते थे, हम अपने कजन्स को भेजा करते थे। और फाइनली राखी रक्षाबंधन के आसपास एसटीडी कॉल लगाया जाता था, कभी घर के लैंडलाइन से, कभी पास वाले एसटीडी पीसीओ बूथ से। नंबर डायल हुआ, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और उधर से जैसे ही हेलो, बस डिस्टेंस थोड़ा सा कम लगने लगता था। पहला सवाल ऑलमोस्ट फिक्स्ड, राखी मिल गई? हाँ हाँ, कल ही मिली, बांध ली, हाँ। और फिर ऑब्वियसली सिबलिंग कॉन्वर्सेशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में यार, और गिफ्ट उसका क्या, बाद में ड्यू स्लिप पकड़ा दो। एंड देन वहां से बुआ कहते, हाँ हाँ ये तो मुझे पता ही था। अगर कजन था तो फोन एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफर होता रहता था, लेकिन कभी आपने नोटिस किया? हम बच्चों को उतना वो मौका नहीं मिलता था, वो बड़े बड़े ही करते थे। ये तो मैं उनका डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उससे नहीं, बुआ से बात करो, अच्छा मम्मी को फोन दो, अरे बच्चों को भी बुलाओ, एक बार आवाज तो सुनाओ तो उनकी। बैकग्राउंड से कोई चिल्ला रहा है कि मेरी भी बात कराओ, कभी लाइन परफेक्टली क्लियर, कभी हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। और यही बोलते बोलते हम लोग चीखने चिल्लाने लगते थे, हेलो हेलो, जैसे कि यहाँ से अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो पहुंच जाएगी एसटीडी के जैसे। सो कभी थोड़ा डिले, कभी कॉल कट, और एसटीडी कॉल्स चीप भी नहीं हुआ करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कॉन्वर्सेशन में वो फेमिलियर सी अर्जेंसी थी कि अच्छा चलो बाकी बाद में बात करेंगे। बट हैज व्हाट आई फाइंड वेरी ब्यूटीफुल अबाउट इट, हम एक दूसरे को स्क्रीन पर नहीं देख पाते थे। पता नहीं राखी जो है रिस्क पर कैसी लग रही है, पता नहीं सामने वाला एग्जैक्टली क्या कर रहा है, लेकिन उस एक राखी मिल गई है, बड़ा अश्योरेंस और रीअश्योरेंस इनफैक्ट मिलता था कि जो धागा ऑनवलप में सफर करके गया था वो अपने इंसान तक पहुंच गया है। आजकल सिबलिंग्स की दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक टैप, एक फेस सामने, और दैट्स वंडरफुल, राइट? लेकिन हम 90s के जो लोग हैं उनको वो वक्त भी याद है जब किसी अपने को मिस करने पर उसका फेस देखना जरूरी नहीं था, कभी कभी दूर से आती हुई एक फेमिलियर सी आवाज ही काफी थी। और शायद रिलेशनशिप्स का कनेक्शन तब नेटवर्क से नहीं, इंतजार से थोड़ा ज्यादा मेजर होता था। रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, ये है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: काजू कतली होगी बड़ों के लिए, हमारे लिए तो डेरी मिल्क हुआ करती थी। एंड यू रिमेम्बर दोज रक्षाबंधन स्पेशल बिग बॉक्स वाले पैक्स जो डेरी मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट से बना के आया करती थी। हमारा तो सपना ही ये था कि अगर ये किसी ने दे दिया तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे 90s में ये एक चॉकलेट का डब्बा ही यूज टू बी एवरीथिंग फॉर अस। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मस्ती 90s में एक स्टेबल पर आज रक्षाबंधन के 90s वाली मेमोरीज को याद किया जा रहा है। सो वेल, 90s के रक्षाबंधन में थाली कितने भी ब्यूटीफुली सजी हो, कि रोली है, चावल है, राखी है, मिठाई है, लेकिन हम बच्चों की आंखों का स्कैनर कहीं और ही चल रहा होता है कि चॉकलेट कहाँ है, है ना? बिकॉज एक टाइम के बाद रक्षाबंधन के साथ चॉकलेट की एंट्री शुरू हुई थी 90s में। एंड बॉस, हमारे लिए ना फेस्टिवल का एक्साइटमेंट सडनली अपग्रेड। काजू कतली हाँ हाँ अच्छी है, लड्डू भी ठीक है, लड्डू आप हमें 15 अगस्त को खाते हुए देखना, ठीक है, वो एक्साइटमेंट तब के लिए है। बर्फी फुल रिस्पेक्ट, पूरी की पूरी तरह, लेकिन अगर पैकेट में कैडबरी दिख गई बस अब असली गिफ्ट मिल गया। 90s की चॉकलेट का भी अपना ही स्टेटस था। नहीं, कैडबरी डेरी मिल्क का वो फेमिलियर सा पर्पल कलर का रैपर, 5-star की वो गोल्डन शाइनी रैपर, पर्क का वो पर्पल कलर का रैपर, एंड अगर किसी ने थोड़ा बड़ा चॉकलेट पैक दे दिया तो सिबलिंग सडनली उस दिन का फेवरेट रिश्तेदार हो जाता था कि यही है वो, इसको हर साल हम टाइमली राखी बांधा करेंगे। एंड फनी पार्ट, राखी बांधने का रिचुअल प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है, तिलक लग रहा है, आरती हो रही है, हमें बताया जा रहा है कि पहले मिठाई खिलाओ, उसके बाद ये करो, बट आपका दिमाग जो है ना वो चॉकलेट मेरे लिए ही है, मतलब पहले से ही आप एक एस्टिमेट लगा लेते थे। नहीं, फिर राखी कंप्लीट होते ही डिस्क्रीट चेकिंग, गिफ्ट बैग में है क्या, चॉकलेट कितनी है, एक है या पैक है, और अगर सिबलिंग्स दो है तो इमीडिएटली टेरिटोरियल नेगोशिएशंस की ये मेरी है, किसने बोला, मेरी राखी के साथ आई है, एंड देयर इट इज। रक्षाबंधन की सीक्रेट सिबलिंग फाइट ऑफिशियली शुरू हो जाया करती थी। वैसे 90s इंडिया में चॉकलेट गिफ्टिंग का कल्चर भी इंटरेस्टिंगली एक्सपैंड ही हो रहा था 90s के टाइम पर। कैडबरी ने चॉकलेट्स को सिर्फ बच्चों के ट्रीट्स से आगे सेलिब्रेशंस और गिफ्टिंग ओकेजंस के साथ एसोसिएट करने वाली एडवर्टाइजिंग पर स्ट्रांगली काम किया। By the late 1990s, campaigns were increasingly positioning chocolate as something for adults and shared happy occasions too. And हम बच्चों को marketing strategy कहाँ कुछ समझ में आनी है, हमारे लिए equation बहुत ही simple हुआ करती थी, festival plus chocolate is equal to excellent festival. आजकल भाई क्या राखी के hampers, insane personalized boxes, gourmet chocolates, fancy packaging, everything is so pretty, right, and so beautiful. लेकिन वो एक simple dairy मिल्क हाथ में मिलने की जो खुशी थी ना 90s में, उसमें पैकेजिंग कम थी, पजेसिवनेस बहुत ज्यादा थी, और सिबलिंग अगर बोले एक पीस देना, एक एक सिर्फ एक, राखी बांधकर 5 मिनट हुए हैं, है ना, प्यार, प्रोटेक्शन, लाइफ लॉन्ग बॉन्ड सब साइड में, हमारा जवाब अपनी वाली खा, मेरे पे नजर मत डालना, आई टेल यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, चलिए चलिए कंटिन्यू रखता है अपना ये रक्षाबंधन वाली 90s वाला सिलसिला।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के फेस्टिवल में मुझे एक रूल आज तक समझ नहीं आया कि अगर घर पर ही रहना है फिर भी नए कपड़े, मतलब साफ सुथरा नहा धो के तैयार होकर ऐसा क्यों रहना है। रेडियो मस्ती 5.7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप यहाँ पर चल रहा है। मैं हूँ 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। सो रक्षाबंधन की सुबह जो है अनाउंसमेंट ऐसा किया जाता था कि सुबह सुबह एकदम जाओ नहा के आओ, अच्छे कपड़े पहनो, सब आने वाले हैं। एंड हम पूछते थे कि लेकिन जाना कहाँ है, अच्छे कपड़े क्यों पहनने, घर पे ही तो है। बट एग्जैक्टली, तो फिर सो बट नहीं, राखी के दिन घर पर रहने का मतलब नॉर्मल घर वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। वो जो फ्रॉक थोड़े दिन पहले जो आप सिर्फ एक बार शायद आपने पहना होगा, जो थोड़ा सा नया नया एकदम इस्त्री करके प्रेस करके मम्मी ने रखा होगा, वो पहन लो। फ्रेश कुर्ता पहन लो, नया थोड़ा अगर सूट कोई रखा हुआ है वो पहन लो, या फिर लोग संभाल संभाल के रखते थे फॉर दीज काइंड ऑफ ओकेजंस, या वो स्पेशल आउटफिट जो है कि मम्मी कभी कभी ना साड़ियाँ जो उनको गिफ्ट में मिलती थी वो संभाल के रख दिया करती थी कि ऐसे त्योहारों पर वो पहन लिया करे। सो सुबह नहा धोकर निकलो, बाल गीले हैं और मम्मी भी कोम लेकर एकदम रेडी होती थी कि इधर आओ बाल बना दूँ। एंड हम लोग लाइक मम्मी रहने दो ना, एंड ऑब्वियसली रहने नहीं दिया जाता था। फिर सेंटर पार्टिंग की जाती थी, दो पोनी टेल्स बनाए जाते थे, क्लिप जो है प्रॉपरली मैच की जाती थी, या फिर अगर लड़कों के बालों की बात की तो साइड पार्टीशन बना के एकदम ऐसे कंघी को चला दिया जाता था कि एक भी बाल अपनी मर्जी से खड़ा नहीं रह सकता। और फिर लगता था टैल्कम पाउडर, फेस पे तो लगता ही लगता था, नेक पे भी लगाया जाता था भर भर के, कभी कभी इतना पाउडर कि फोटोग्राफ में बच्चा नेचुरली अगर फेयर नहीं फ्रेशली डस्टेड लगता था। कपड़े नए हैं तो इंस्ट्रक्शंस भी कॉम्प्लीमेंट्री आती थी कि भाई इसमें कुछ गिरा मत देना, फ्लोर पे मत बैठना, चॉकलेट हाथ में लेकर ड्रेस को टच मत करना, मतलब नए कपड़े पहनकर बच्चा सडनली म्यूजियम के एग्जिबिट में जैसे बैठ गया हो। फिर डोरबेल बजी, रिश्तेदार आ गए हर नए गेस्ट के साथ, अरे वाह कितने अच्छे लग रही हो, और हम ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ खड़े रहते थे बिकॉज 90s किड्स को कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। फिर राखी, मिठाई, कजन्स, फोटोज एंड अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लेटर कुर्ता जो है हाफ अनटक्ड, हेयर क्लिप मिसिंग है, फ्रॉक पर चटनी का माइक्रोस्कोपिक स्टेन लगा हुआ है, और वो केयरफुली कॉम्ब्ड हेयर, या बैक टू द फैक्ट्री सेटिंग्स आई टेल यू। बट फेस्टिवल्स तब ऐसे ही तो फील होते थे राइट, सेलिब्रेशन के लिए हमेशा कहीं जाना जरूरी नहीं था, कभी घर ही वेन्यू था, फैमिली ही गेस्ट लिस्ट बनती थी, और नए कपड़े पहन लेना ही अनाउंसमेंट था कि आज ऑर्डिनरी डे नहीं है, मे बी इसीलिए आज भी किसी फेस्टिवल की सुबह फ्रेश कपड़े पहनो तो टैल्कम पाउडर की फेमिलियर सी स्मेल आए तो अंदर से 90s वाला बच्चा जो ऑटोमेटिकली पूछ लेता है कि भाई अच्छा आज कौन कौन आ रहा है। भाई ये जो है इतनी खूबसूरत यादें है ना, आई टेल यू, जरूर बताया करें इफ दीज मेमोरीज कहीं पे आप एसोसिएट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय मेमोरीज में ये जो है छोटे छोटे बीन कहलाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट, वी ऑल हैव सिमिलर काइंड ऑफ मेमोरीज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ 90s। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

अच्छा एक बात बताइए, 90s के रक्षाबंधन में राखी बनवाना वॉज एक रिचुअल राइट, लेकिन उसके बाद जो होता था एंड फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज ओके, वो कॉम्पिटिशन ही तो था नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप पे आज हम लोग 90s के रक्षाबंधन की जो है यादों को ताजा कर रहे हैं। सो कजन्स एक जगह जमा हुए नहीं कि सबकी नजर ऑटोमेटिकली एक दूसरे के रिस्ट पे जाया करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, क्योंकि जब वो दूसरे भाइयों के साथ मिलता था ना तो उनके कुछ बातें ऐसी चलती थी कि तेरी कितनी है, 3, बस मेरी तो 1-5 है, कुछ कुछ की तो मतलब पूरे ऐसा लगता था गर्दन तक राखियां, इतनी राखियां गर्दन तक बंधी हुई है, भरे हुए दोनों हाथ, जगह नहीं मिल रही है। बट कब रक्षाबंधन का लीडर बोर्ड ये बन जाता था किसी को नहीं पता था। जिसके रेस्ट पर सबसे ज्यादा राखियां वो उस दिन का अनऑफिशियल चैंपियन डिक्लेयर कर दिया जाता था। और अगर जॉइंट फैमिली या कजन्स का बड़ा ग्रुप हो तो हाथ का सीन ही अलग, एक सिंपल धागे वाली, एक मोटी वाली, एक शाइनी गोल्डन वाली, एक छोटी सी, एक इतनी बड़ी की आधी कलाई कवर हो जा रही है। और हर राखी की आइडेंटिटी याद कि ये दीदी ने बांधी, ये बुआ की बेटी वाली है, और ये जो है वो सुबह वाली, वो पड़ोस वाली आंटी की बेटी वाली। फिर डिजाइंस का कंपैरिजन किया जाता था कि तेरी वाली में तो बीड्स है, मेरी वाली देखो इसमें स्टोन है, मेरे सबसे बड़ी वाली है। बेसिकली 90s का वेयरेबल सोशल स्टेटस। और राखी बांधने का के बाद उसे तुरंत उतारना, नो, पूरा दिन वो जो कलाई है प्राउडली डिस्प्ले पर रहती थी। खाना खा रहे हो राखी के साथ, खेल रहे हो राखी के साथ, शाम को बाहर गए स्लीव थोड़ा ऊपर करके, पब्लिक को भी तो पता चले। फिर अगले दिन में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता था। किसी का धागा लूज है, किसी का डेकोरेशन टेढ़ा हो गया है, कुछ गिर गया है, किसी का कलर हल्का हो गया है, एक राखी का सेंटर पीस पता नहीं कहां चला गया है, लेकिन फिर भी रिस्ट पर वो लटकी हुई है। फिर मेरी मम्मी मेरे भाई को बोलते, अब निकाल दे यार, गंदी हो गई है। नहीं, बिकॉज समहाउ उस धागे को उतारने का मन ही नहीं करता था इन लोगों का। बॉयज, इज इट ट्रू और वॉज इट ओनली विथ माई ब्रदर? पता नहीं, कुछ अलग ही कॉम्पिटिशन करता रहता था वो दूसरे लड़कों के साथ राखियों को लेकर। और मुझे लगता है कि उसमें से इट्स अ वेरी स्वीट थिंग इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट। बचपन में हमें सिंबलिज्म के बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पता थे, हम बस इतना जानते थे कि ये मुझे किसी अपने ने बांधी है, और मे बी इसीलिए नंबर भी प्राउडली काउंट करते थे। 5 राखियां मतलब 5 डिजाइंस नहीं, बचपन के दिमाग में परहैप्स समवेयर इट मेंट देखो मेरे पास कितने सारी बहनें हैं। नहीं तो 90s राखी, और हम बहनें सोचती थी आह आज तो 6-7 जगह से माल आएगा। 90s की राखी लीटर बोर्ड में आपका पर्सनल रिकॉर्ड।

और क्या था और क्या है जरा बताइए, मुझे भी बताइए। फुल हाउस रिस्ट से नेक तक रेडियो बस 8.7 लाइव पर। या डू लेट मी नो, स्टे ट्यून्ड।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ। मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो। यहाँ पर रक्षाबंधन की बात हो रही है। व्हाई? बिकॉज टुमारो इज रक्षाबंधन का त्योहार। एंड अगर आप ऑनकोर सुन रहे हो तो सैटरडे है, विच मीन्स कि एक दिन हो चुका है रक्षाबंधन का। तो बेसिकली फील और फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, और नहीं बना है तो मेरी बातें सुनकर वो आ जाएगा। सो रक्षाबंधन का रिचुअल थियोरेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? कि राखी करो, आरती करो, मिठाई, तिलक, ब्लेसिंग्स। थियोरेटिकली मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज सिबलिंग्स को एक दूसरे के सामने बिठा दो और किसी एक के हाथ में रोली दे दो तो डिवोशन के साथ साथ बदला लेने की भी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती थी। सीन याद है कि जब, अच्छा, मम्मी इंस्ट्रक्शंस दिया करती थी, राइट? कि अच्छे से टीका लगाना, अब इसमें अब चावल उठाओ, अब इसको यहाँ पे ऐसे लगाओ। अब नॉर्मल तिलक के लिए बस एक छोटा सा टीका इनफ है, राइट? लेकिन सिबलिंग के दिमाग में भाई ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है, दोबारा बस अगले साल ही मिलेगा। सो फिंगर रोली में और फोरहेड पर थाप। थाप मतलब ऐसा लंबा टीका। छोटा सा टीका लगाने को बोला जाता था, बट फुल साइज, जितना अगली उतना बेटर भाई के ऊपर। एंड देन वहां से वो चलाता था, ओए इतना बड़ा क्यों लगाया? एंड हमारी तो हंसी ही बंद नहीं होती। ओह उप्स, सॉरी, गलती से हो गया। गलती बिल्कुल नहीं, प्री मेडिटेटेड बिल्कुल था ये। फिर चावल लगाने की बारी। नॉर्मल इंसान दो चार चावल के ग्रेन्स लगाता, हम पूरा पूरा ऐसा पूरा पिंच भर के। अब आधे चावल फोरहेड पे, आधे आईब्रोज पे, आधे नोज पे गिर रहे हैं, उधर से हमें डांट भी पड़ रही है। बस करो सीधा, राखी करो दोनों, अब तुम लोग लड़ाई मत शुरू कर देना। एंड पूरी फैमिली अलग से हंस रही होती थी। एंड देन कम्स ऑफ कोर्स द मिठाई। अब यहाँ भी सिबलिंग को पोलाइटली एक बाइट खिलाया जा सकता है, ओके? जा सकता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप ऑथेंटिक लेवल पे चल रहा हो तो मिठाई का पीस थोड़ा ज्यादा, कि मुंह खोलो और पूरा ठूस दो उसके अंदर, खाओ खाओ, और अगले सेकंड वो इंसान आपको गिफ्ट दे रहा होता है। दैट्स सिब्लिंग्स फॉर यू। एक मिनट की मम्मी इसको बोलो, नेक्स्ट मिनट मेरा गिफ्ट का है। और अगर कोई थर्ड पर्सन सिबलिंग को कोई कुछ कह दे सडनली, यूनाइटेड नेशंस पीस ट्रीटी साइंड, ठीक है, हम एक टीम है, हम लड़ रहे हैं उनसे, कि नहीं तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। सो एक्चुअली रक्षाबंधन की मुझे यही इम्परफेक्शन बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। प्यार बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन पॉलिश नहीं है, इमोशन है, साथ में टीजिंग फ्री मिलती है, राखी बांधेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, गिफ्ट भी देंगे, लेंगे भी, लेकिन फोरहेड पर नॉर्मल टीका नहीं लगेगा। नहीं बॉस, इतनी इजीली थोड़ी ना छोड़ेंगे। बिकॉज 90s सिबलिंग्स की डिक्शनरी में अफेक्शन का एक ट्रांसलेशन ये भी था, मैं तुझे रिटेट कर सकता या सकती हूँ क्योंकि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, आई हैव फुल राइट टू डू सो। एंड सच बताइए, आपके घर में राखी का टीका डिसेंट होता था? वो तो अब होता है, मैं तो अभी भी नहीं करती हूँ। लाइक हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। फोरहेड पे प्रॉपर, ना ना ना, टारगेट प्रैक्टिस हमने बहुत सालों से कर रखी है, आई एम टेलिंग यू, द अगलीस्ट इज द बेस्टेस्ट। रेडियो बस 24/7 लाइव पर। लेकिन आजकल मेरा भाई चढ़ता नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग। द चिड़ जब आपका जो है सिबलिंग जाता है, दैट यूज टू गिव यू द हाई, अब वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मेरी प्रॉब्लम वहां पे, मैं नहीं हुई हूँ, ये भी वो है।

0: सो से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: हाउ कैन वी फॉरगेट द फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई आई रिमेंबर दिस, बिकॉज वी रिसेंटली जो है हमने देन एंड नाउ का जो है कॉन्टेस्ट चलाया, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप का जो है, एंड इट वॉज सो अमेजिंग, राइट? हैव यू सीन द पिक्चर्स ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पर जो है लोगों ने अपनी देन राखी एंड नाउ जो है अपने सिबलिंग्स का जो फोटो भेजा है। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो प्रिटी, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यस, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। और 90s वाली अंतरा जो है आपको ये बता रही है कि 90s के रक्षाबंधन का पूरा दिन ठीक है हो गया, राखी बांधी, ये सारी चीजें हो गए, स्टेप्स टू डू, कजिन्स के साथ मस्ती भी हो गई, अब बस एक कंपलसरी फॉर्मेलिटी बाकी है। रुको, कोई कपड़े चेंज नहीं करेगा क्योंकि फोटो ली जाएगी, और सडनली पूरा घर फोटोग्राफी का स्टूडियो, तुम दोनों साथ में बैठो, अरे राखी वाला हाथ आगे करो, बालों को ठीक करो, सीधे बैठो, एंड सिबलिंग्स आर ऑलरेडी इरिटेटेड कि यार जल्दी करो यार, कैमरा निकला, वो 90s वाला फिल्म कैमरा की बात कर रही हूँ। और यहाँ आज की जनरेशन को एक चीज समझनी पड़ेगी, फोटो हमारे पास लिमिटेड थी, लिमिटेड। फिल्म रोल में 24 या 36 एक्सपोजर्स हुआ करते थे, राइट? मतलब कोई 47 या 10,000 सेल्फीज लेकर बेस्ट वन चूज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक फ्रेम वेस्ट हुआ तो हुआ। सो पापा कैमरा के पीछे रेडी, हम दोनों समहाउ सिविलाइज्ड एक्सप्रेशन में, एंड क्लिक, वो आवाज भी आती थी, दैट इज दिस 90s कैमरा वाली आवाज आई एम टॉकिंग अबाउट। बस हो गई राखी की फोटोग्राफ। अब फोटो अच्छी आई है कि नहीं, हु नोज, जब डेवलप हो गया आएगी तभी पता चलेगा। स्क्रीन तो नहीं था ना चेक करने के लिए, अब आंखें बंद हो गई, 3 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हुई कि नहीं हुई। सिबलिंग साइड में देख रहा है, अब क्या कर सकते हैं यार, फ्लैश में फेस कंप्लीटली वाइट हो गया। सो कंग्रेचुलेशंस, फैमिली एल्बम में आपकी परमानेंट एंट्री हो चुकी है। और वो वेट भी कितना इंटरेस्टिंग था, राइट? फिल्म रोल का कंप्लीट होगा, स्टूडियो जाएगा, डेवलप होगा, फिर एक दिन वो छोटा सा एक फोटो पैकेट घर आएगा, सब लोग इकट्ठा होंगे कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, एक एक फोटो निकल रही है और ये वाली अच्छी है, इसमें मेरी आँख क्यों बंद है, देखो इसका एक्सप्रेशन कैसा है। एंड द फनी थिंग इज, वही इम्परफेक्ट फोटोग्राफ्स जो है आज सबसे प्रेशियस लगती है। नो फिल्टर्स, नो रीटेक्स, एंड नो वेट वेट वेट, आई डोंट लाइक माय प्रोफाइल, आई डोंट लाइक दिस एंगल ऑफ माइन, लेट मी चेंज। समटाइम्स हेयर वॉज मेसी, समटाइम्स ब्लिंकिंग हैपेंड, बैकग्राउंड में रैंडम प्लास्टिक की चेयर दिखाई दे रही है, टेबल पर मिठाई का ओपन डब्बा नजर आ रहा है, अभी तो AI से सब कुछ इरेज भी हो सकता है, दैट इज सो गुड, राइट? बट दैट मोमेंट इन द 90s वॉज एब्सोल्यूटली रियल। आज हम एक फेस्टिवल में हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, एंड दैट्स वंडरफुल, यस, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन 90s फैमिली एल्बम खोलो तो हर फेस्टिवल की शायद एक या दो मैक्सिमम कुछ फोटोग्राफ्स आपको मिलेगी। इसीलिए परहैप्स हर फोटो का वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा था, वो सिर्फ पिक्चर नहीं थी, वो प्रूफ थी कि एक दिन हम सब एक ही रूम में एक ही वक्त पर एक साथ थे। और अगर रक्षाबंधन की फोटो में आंख बंद आ गई थी तो कोई एडिट नहीं कर सकता, एल्बम खोलो आज भी वही आंख बंद ही मिलेगी। फैमिली भी आज कहेगी कि देखो इस फोटो में तुम्हारी आंख बंद है, पता नहीं क्या ही सोच रही थी, तुमको कितनी बार बोला है सीधा बैठा करो, ओ गॉड। बट क्या करें, बस थोड़ी देर और आज का हमारा मस्ती मिक्स टेप का, 90s मिक्स टेप का ये सफर बस रैप अप करने का समय आ रहा है। बट यार, लेट अस एंजॉय दीज मोमेंट्स टिल दे आर विद अस, इज़न्ट इट? स्टे ट्यून्ड।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्रेया, जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: माइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, 1 कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: और भाई इसी के साथ साथ आज मस्ती 90s मिक्स टेप का वक्त हो गया है कि हम रैप अप करें। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 90s वाली आंट्रा के साथ आप थे। आज हमने जो है रक्षा बंधन की जो है मेमोरीज और यादों को ताजा किया। मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार आ रहा था व्हाइल वी वर टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट इट कि हम बड़े कब हो गए यार। वो कजन्स के घर के एंडलेस रक्षाबंधन के राउंड्स, वो मार्केट में खड़े होकर राखियां चूज करना, एनवलप में 11, 21 या 51 रुपए मिलने की एक्साइटमेंट, रिस्ट पर राखियां काउंट करना, तिलक के नाम पर एक दूसरे को फोरहेड को पेंट कर देना, और फिर वो एक मैंडेटरी फोटोग्राफ, ठीक है, जिसमें किसी की आंख बंद, किसी के बाल खराब, किसी का एक्सप्रेशन अजीब, लेकिन पूरी फैमिली एक फ्रेम में। तब रक्षाबंधन का मीनिंग, पर हमने कभी बहुत डीपली इतना सोचा नहीं। नहीं, हमारे लिए तो वो सिबलिंग वो इंसान था जिसके साथ रिमोट के लिए लड़ाई हम करते थे, जिसकी चीज बिना पूछकर यूज कर सकते थे, जिसकी कंप्लेन मम्मी से करनी भी थी और अगर मम्मी उसको ज्यादा डांट दे तो थोड़ी देर बाद बुरा हमें ही लगता था, राइट? दैट्स द स्ट्रेंज थिंग अबाउट सिबलिंग्स। बचपन में हम एक ही घर शेयर करते थे, फिर बड़े होते होते सिटीज जो है वो अलग हो गई, कंट्रीज अलग हो गई, स्केड्यूल सबके अलग अलग हो गए, जिंदगियां सबकी अलग अलग हो गई, और कभी कभी कॉन्वर्सेशंस के बीच का गैप भी बड़ा हो जाता है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लेकिन फिर भी कोई जब भी पुरानी फोटोग्राफ मिलती है ना, कोई चाइल्डहुड का इंसिडेंट मेंशन होता है एंड सडनली द डिस्टेंस डिसअपीयर्स बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हु रिमेंबर अ वर्जन ऑफ यू, दैट वर्जन ऑफ यू जब आप खुद भी नहीं जानते थे कि आप बड़े होकर कौन बनोगे, है ना? They knew your ridiculous haircut, your stupid fights, your secret hiding places, your embarrassing nicknames, your entire before version. And maybe that's why what makes that bond so special. Rakhi ka daga har saal naya ho sakta hai, lekin usme badhi hui history bahut purani hoti hai. So this Raksha Bandhan, परफेक्ट पोस्ट हो या ना हो, परफेक्ट गिफ्ट हो या ना हो, एक काम जरूर करना, अपने सिबलिंग को या सिबलिंग्स को वो एक पुरानी मेमोरी जरूर याद दिला देना जिस पर सिर्फ आप दोनों का हक है, एंड फिर कहना यार हम भी क्या थे ना। इसी बात के साथ बिल्कुल छोड़कर जा रही हूँ और मस्ती 90s मिक्स टेप पर आज बस इतना ही। रिश्ते संभाल कर रखिए, पुरानी फोटोग्राफ्स भी संभाल कर रखिए, और वो स्टोरीज भी जो सिर्फ फैमिली को पता है, क्योंकि वक्त सबको बड़ा कर देता है लेकिन कुछ लोग हमें हमारे बचपन तक वापस ले जाने का रास्ता कभी नहीं भूलते। अभी रक्षाबंधन टू ऑल सिबलिंग्स, और मिलते हैं अगले एक एपिसोड में मस्ती 90s मिक्स टेप पर एक और याद के बहाने, फिर थोड़ा सा और बचपन जीने का टाइम। जी हाँ, 90s वाली आंत्रा कह रही है बाय बाय।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
4: तुमको लेकर
3: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पहले चलो,
3: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live.

0: part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out. Josh Mera.
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सैयद जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
4: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
0: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: Josh mein raho.
5: Mere Karan Arjun aayenge.
4: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: भारत के एक शहर जयपुर की बात से शुरू करते हैं आज के लेजेंड्स का सफर, जहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य। मेरा नाम है समर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छे, सिंगापुर, सारुज है। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। पर तब भी नाम की ही तो सारी माया है, नाम ही तो दुनिया कमाना चाहती है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बेटे को पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी कभी इसका उलट भी हो जाता है, पिता को बेटे के नाम से जानते हैं लोग। ऐसी एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हम जयपुर में हैं और फिल्म पाप और पुण्य की शूटिंग चल रही है। फिल्म के अभिनेता हैं शशि कपूर साहब और एक्ट्रेस हैं शर्मिला टैगोर। सीन ये है कि शशि कपूर साहब को विलेन पीट रहा है। फाइट सीन में विलेन ही हावी भी है, मगर तभी अचानक से विलेन बहुत जोर से चीखता है। सब लोग सोचते हैं ये क्या हुआ, ये तो होना नहीं था, ये कैसे हो गया। सभी ने नीचे देखा तो एक छोटा सा बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा, विलेन के पैर से चिपका हुआ है और उसे जोर से काट खा रहा है मुंह से। बच्चे को लगा कि उनके शशि अंकल को कोई मार रहा है, उनको बहुत खतरा है, इसलिए वो उनको बचाने पहुंच गया। इसी बच्चे की आज हम बात करने वाले हैं। यूं तो ये छोटे नवाब दो मशहूर शख्सियतों के बेटे हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर नवाब पटौदी के। मगर जब ये बड़े होकर सैफ अली खान हुए तो एक्टर बन गए और शर्मिला जी सैफ अली खान की माँ हो गई और नवाब पटौदी उनके पिता हो गए। इन्हीं समीकरणों के बदलने को कहते हैं जिंदगी। ये बात अलग है कि सैफ अली खान भी आने वाले वक्त में तैमूर और जहांगीर के पापा के नाम से जाने जाएंगे। उससे पहले हम उनके फिल्मी सफर के साथ साथ अब तक के जीवन के सफर पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हीं के कुछ गाने अब तक पेश कर रहा हूँ। आज का ये शो शुरू हो चुका है। कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर कहें और सुनते रहिएगा साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मर्सी 24/7 लाइव। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: गया।
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: कहा था ना यूं गया और यूं आया, लीजिए लौट आया हूं मैं। लेजेंड सुन रहे हैं आप समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज लेजेंड्स के सफर में उस एक लड़के की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं जो खानदानी है, खूबसूरत है, अदाएं माशाल्लाह कमाल की, या यूं कहें कि हर तरीके से टॉप क्लास कोशिश कर रहा है हीरो बनने की। उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाया गया है टॉप क्लास जगह पर, यशराज बैनर। यश चोपड़ा फिल्म बना रहे हैं परंपरा और उन्हें फिल्म के लिए थर्ड लीड चाहिए जिसका ऑडिशन देने आता है ये लड़का। उसे एक लाइन बोलनी थी कैमरे के सामने, लाइन थी देवदास के अवतार अब तो कुछ सोचो, पर लड़का बोल नहीं पाता, एक इतनी सी लाइन भी नहीं बोल पाता। आदित्य चोपड़ा जो ऑडिशन ले रहे हैं वो कह रहे हैं सुन वापस से पढ़ के बोल ले, मैं होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन तब भी एक छोटी सी लाइन बोलने में उसे इतनी कठिनाई हो रही है कि क्या कहिएगा। लेकिन किस्मत कनेक्शन तो सबसे ऊपर है भाई, ये तय था कि इस लड़के को एक सशक्त अभिनेता सैफ अली खान बनना था, जो हुआ भी। पहला ऑडिशन कामयाब न हुआ तो न सही, आज उनकी एक्टिंग के मुरीद बहुत हैं। मैं खुद भी उनकी एक्टिंग का कायल हूँ। ओमकारा का ईश्वर या लंगड़ा त्यागी या फिर रेस 2 का रणवीर रोनी सिंह हो या फिर लव आजकल का जयवर्धन सिंह या फिर सलाम नमस्ते का शेफ, सबके सब उनके जो कैरेक्टर हैं कमाल के हैं। दिल चाहता कि कैरेक्टर को कोई कैसे भूल सकता है, एक अमिट छाप छोड़ने वाले तमाम कैरेक्टर उन्होंने निभाए, बखूबी निभाए। यही लगता है अब कि सैफ तो सैफ हैं, चार्म ही अलग है उनका। और मुझे तो उनकी ना आवाज भी बहुत पसंद है, थोड़ी सी अलग टाइप की है नहीं। वल अभी उनकी फिल्म से उन पर फिल्माए गए कुछ गाने सुन लेते हैं, फिर आपसे और बहुत सारी बातें करनी है। सैफ अली खान साहब की पूरी जिंदगी डिस्क्राइब करेंगे, हालांकि वक्त कम है लेकिन जो कुछ हम बता सकेंगे हम बताएंगे। सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हिंदी सिनेमा के हीरो हमेशा एक बंद बक्से के भीतर ही रहे, मतलब उनकी इमेज, उनका काम, उनका लुक, सब कुछ बिल्कुल एक तर्ज पर ही चलता है, खास तौर से अगर बात 90s के दौर की हो तो। लेकिन उसी वक्त से निकले सैफ अली खान शायद उन कुछ एक्टर्स में से हैं जिनके रोल्स की चॉइस शानदार रही, खास तौर से उनकी सेकंड इनिंग्स में। वो भी आज खुश होकर कहते हैं कि शायद मेरी फर्स्ट इनिंग्स में जो मुझे ज्यादा ओवर द टॉप फेम नहीं मिला ना, इसी की वजह से मुझे एक वक्त महसूस हुआ कि मेरे पास खोने का तो कुछ है ही नहीं। तब मुझे लगा कि इफ दिस डजंट वर्क आउट इन कन्वेंशनल वे, लेट इट बी, लेट मी बी अ गुड एक्टर और डू द रोल्स व्हिच सेटिस्फाई मी नो मैटर हाउ दे लुक। और यही सैफ अली खान को सैफ अली खान बनाता है। उनकी एक्टिंग ओवर द टॉप रही, जिसका जिक्र मैं कर ही रहा हूँ बार बार, और इसका कारण रहे उनके एक्सपेरिमेंटल रोल्स। शायद वही हैं जिन्होंने ए ग्रेड के बॉलीवुड एक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रे शेड बैड गाय वाले रोल्स किए हैं, वो सैफ ही हैं। आप सोच रहे हैं शाहरुख खान, गलत हैं आप। और ये तब से हुआ जब उन्होंने फिल्म की थी क्या कहना। इस फिल्म के साहसिक किरदार के लिए प्रीटी जिंटा की सबने तारीफ की हो, लेकिन सैफ का किरदार भी कम एक्सपेरिमेंटल नहीं था। कौन हीरो उस वक्त ऐसा रोल कर सकता था जो एक खराब बिगड़ा हुआ लड़का है और लड़की के साथ बेवफाई करता है, उसे छोड़ देता है। जब उससे शादी की बात कही जाए तो ये डायलॉग डिलीवर कर सकता है कि मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, मैं सबसे शादी थोड़ी कर लूंगा। दिस नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेबल गट्स टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रोल। और उस वक्त जब आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अपने आप को प्रूव करना हो, तो कैसे हो सकता है। और बात सिर्फ क्या कहना की ही नहीं है, एक हसीना थी, तानाजी, बाजार, रंगून, ओमकारा, सभी फिल्मों के जरिए इन्होंने साबित किया कि ही लव्स टू प्ले अ बैड गाय एंड वी ऑल लव दैट बैड गाय। तो अपना प्यार दर्शाने का तरीका होता है सभी का अपना अपना, है ना जी। मेरा है, मैं गाने सुनवा देता हूँ जब मुझे बहुत प्यार आता है आप पे। तो ये गाने सुनिए और सैफ अली खान की कहानी सुनते रहिए समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। आपने ट्यून किया है लेजेंड्स, सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से समर के साथ। आप बने हुए हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, जहां आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के छोटे नवाब सैफ अली खान साहब की। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हिंदी फिल्मों का एक अभिनेता बन जाए और जिसने अपने बचपन में बॉलीवुड की कोई फिल्म देखी भी ना हो। मतलब जब हम फिल्म देखते हैं तभी तो फिल्में करने का मन होता है। भोपाल में बड़े हुए जहां घर में ना तो टीवी था और ना ही फिल्में, मतलब ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था फिल्में देखने का। उनको अगर कोई फिल्मी कहानियां सुनाता भी था ना तो वो थे उनके फैमिली टेलर नंदा जी। लेकिन जब बड़े हुए और दिल्ली आए तो घर के पास वाली वीडियो लाइब्रेरी उनको बहुत ही पसंद आ गई। उनका पूरा फोकस उस पर ही रहने लगा। पूरा खोज डाला, पूरी खोजबीन करके सारी फिल्में देख डाली। लेकिन तब भी ज्यादा ध्यान उनका रहा विदेशी फिल्मों पर, और इसका श्रेय जाता है उनकी मम्मी शर्मिला टैगोर को। वो कहती थी कि ऑड्रे हेपबर्न, बॉब हॉप, डैनी के, जूली एंड्रूज की फिल्में देखो अगर देखनी है तो। उनको क्लिंट ईस्टवुड से प्यार हो गया था और वो उनकी फिल्में देखते थे। हालांकि उनके पिताजी को, वाले साहब को, मंसूर अली खान साहब को कतई पसंद नहीं था कि घर में टीवी वगैरह हो, न वो फिल्म्स पर डिस्कस करना चाहते थे। मगर तब भी छोटे नवाब सैफ अली खान साहब के साथ वो भी क्लिंट ईस्टवुड की फिल्में देखा करते थे। और जो वीडियो लाइब्रेरी में सैफ अली खान साहब ने खोज की, उसी खोज ने उनकी राह खोल दी फिल्मों के लिए। अच्छा, अपने फादर के सैफ बहुत करीब रहे। इवन जब शर्मिला जी बिजी रहती थी, शूट पर रहती थी, तो उनके पापा ही घर पर रहा करते थे, वो उन्हें संभाला करते थे। तीनों बच्चों यानी सैफ अली खान, उनकी दोनों बहनें सबा और सारा, तीनों को, क्योंकि साहब नवाब थे, घर में वही ठाट बाट और डिसिप्लिन भी था काफी। इन सब के साथ सैफ अली खान का बचपन बीत रहा था और बड़े मजे से बीत रहा था। उनके लिए बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी है अपने पापा को घर के पिछवाड़े वाले मैदान में क्रिकेट खेलते देखना। वैसे उसे घर कहना तो लाजमी नहीं होगा, वो तो महल था। और भी बातें करेंगे सैफ अली खान साहब की, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज हम सैफ अली खान साहब की कहानी आप तक लेकर आए। सैफ अली खान साहब हमेशा चाहते थे कि वो अपने पापा के जैसे बने, बहुत ही काम और पेशेंट, और हाँ, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो जिसमें। वेल, सैफ अली खान साहब का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का, बहुत जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि माँ बाप दोनों ही उन फील्ड से थे जो इंडियंस की जान है, जैसे क्रिकेट और सिनेमा, मगर उन पर कभी बंदिश नहीं थी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। सैफ को फोर्स नहीं किया गया कि वो क्रिकेट ही खेलें या एक्टर ही बने। उन्होंने जब अपनी इच्छा से एक्टर बनना चुना, फादर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत उन्हें इस तरफ आगे जाने को कह दिया। उनके दादाजी वो एक पोलो प्लेयर थे, कश्मीर के महाराजा उनको बहुत पसंद करते थे। उनके खेल से खुश होकर किंग ने एक स्विस वॉच दी थी उन्हें, जिसे खुद महाराजा ने 10 पोलो प्लेयर्स के बदले में खरीदा था। ये वॉच नवाब साहब ने अपने बेटे को दी, यानी टाइगर पटौदी, मंसूर अली खान साहब को, और उन्होंने सैफ अली खान साहब को। बस ये बात अलग है कि पहले एक स्पोर्ट्समैन से दूसरे स्पोर्ट्समैन तक का ये सफर चला, अब ये कलाकार के पास है। वक्त ही बताएगा कि अब ये किसके पास जाएगी। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने फिल्मी करियर को संभालने के साथ साथ फैमिली लेगेसी को भी वो संभाल रहे हैं, और ये एक बड़ी बात है। उनका पटौदी वाला महल, जो एक होटल को लीज पर दिया गया था, उन्होंने उसे फिर से अपने पोजेशन में ले लिया है और उसके पैसे चुका दिए हैं, और अब उस महल को वो संभाल रहे हैं, क्योंकि वहां उनके दादाजी, पापा, सभी की यादें हैं। खानदानी विरासत है वो, और इसकी हिम्मत और प्रेरणा उनको माँ से मिलती है। बहुत पहले जब उन्होंने एक बड़ा घर खरीदने की सोची मुंबई के आसपास और चाहा कि उसे पटौदी हाउस जैसा बनाए, तब उनकी माँ ने उनसे ये कहा था कि ऐसा क्यों करना है, जब अपने पास एक बड़ा घर है उसे वापस ले लो। और सैफ ने ये जिम्मेदारी निभाई और अपना घर वापस ले लिया। एक एक्टर के तौर पर उनकी जर्नी को भी जानेंगे, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स।

0: जया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत हम बचपन में बहुत सुनते थे। वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 पर कर रहा हूँ आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। मगर साहब, ये कहावत यहाँ एकदम उलट साबित होती है। न पढ़ने से न खेलने से नवाब बनते हैं, नवाब के घर में पैदा हो तो नवाब कहलाते हैं। बाकी हर किसी की जिंदगी करियर का ग्राफ जो होता है वो होता है, बदलता रहता है। सफलता असफलता की लकीर सागर की लहरों की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। कुछ ऐसी ही कहानी है सैफ अली खान साहब की भी। उनका शुरुआती करियर बहुत ही साधारण था, बहुत साधारण। उनके खाते में एक भी सोलो हिट नहीं होने की वजह से उन्हें वो शोहरत हासिल नहीं हुई जो उनके बाकी साथी कलाकारों को हो रही थी। अब जब भी खान्स की बात होती है तो उसमें सैफ का नाम कहीं शुमार ही नहीं किया जाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2000 से पहले की थी, सन 2000 से पहले की, क्योंकि नई सदी के आगाज के साथ ही सैफ की सफलता का भी आगाज हुआ। साल 2000 का दशक उनके करियर का सबसे पीक वाला दशक रहा। फिल्म थी दिल चाहता है। 2002 में आई इस फिल्म की सफलता ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई और ये वो वक्त था जब नए नए युवा डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में आ रहे थे और नई सोच के दर्शकों के लिए नई तरह की फिल्में बना रहे थे। और दिल चाहता है के बाद सैफ के करियर की गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली। सलाम, नमस्ते, हम तुम, इन फिल्मों ने सैफ को कामयाब एक्टर्स की फेहरिस्त में शुमार करा दिया। इतना ही नहीं, 2004 में आई उनकी फिल्म हम तुम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, जो कि फिल्मी दुनिया में बहुत ही बड़ी इज्जत की बात है। और इसके बाद उनकी बतौर एक्टर और भी इज्जत अफजाई हुई। और कमाल की बात यह है कि उस साल दो ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई जिनमें कलाकारों की परफॉर्मेंस इतनी उम्दा थी कि फिल्म क्रिटिक्स ने उन्हें नेशनल अवार्ड का विजेता पहले ही घोषित कर दिया था। वो फिल्में थी लक्ष्य और स्वदेश। इसमें ऋतिक और शाहरुख की परफॉर्मेंस उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसमें से एक मानी जाती है। ऐसे में सैफ ने नेशनल अवार्ड को अपने नाम करके सबको चौंका दिया था। सैफ अली खान के करियर पर और भी बातें करेंगे हम और ये जारी रहेंगे। आपको बस मेरे साथ बने रहना होगा, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर, आपके साथ मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कुछ कहना है तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहिएगा।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, आप हैं मेरे यानी समर के साथ। आज मैं आपको सुना रहा हूं सैफ अली खान की दास्तान। बॉलीवुड के बदलते दौर में, जो लगभग 2000 के आसपास का वक्त है, और फिल्म में हीरो से लेकर उनकी इमेज, स्टोरी, कहानी सब बदल रहा था, या शॉर्ट में कहें तो सिनेमा मल्टीप्लेक्स हो रहा था, और सैफ उस वक्त इस बदलते मल्टीप्लेक्स सिनेमा के फ्लैग बेयरर रहे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिल चाहता है फिल्म से एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। सैफ बताते हैं कि जब फरहान उनके पास आए और दिल चाहता है की स्टोरी सुनाई, सैफ को अच्छी तो लगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी फिल्म क्या लोग देखेंगे। तो जानते हैं उन्होंने फरहान से क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले आमिर का जवाब आने दो, अगर वो हाँ करेंगे तो मेरी हाँ है, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट हिज माइंड, खास तौर से लगान देखने के बाद। अरे आमिर और सैफ का एक और मजेदार किस्सा है। एक बार सैफ ने आमिर से पूछा कि कई बार ये अजीब से कपड़े जो प्रोड्यूसर्स कह देते हैं पहनने को, क्या करूं ऐसे में? मैं कहता हूं कपड़े खराब हैं तो लोग एरोगेंट समझते हैं। तब आमिर खान साहब ने उनसे कहा था, डोंट से यू डोंट लाइक द क्लोथ्स, जस्ट से दिस इज अनलकी फॉर मी, और फिर देखना दे विल ऑल बर्न दैट क्लोथ्स। और इस बात के बाद वाकई सैफ ने कई बार हथियार इस्तेमाल किया। जब उन्हें कपड़े पसंद नहीं आए और मना करने के बाद भी फिल्म वाले नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे उनकी बात, तब उन्होंने कहा कि एक्चुअली सच ये है कि ये मेरे लिए अनलकी है, एंड इट वर्क्ड। देखिए, हालांकि सैफ ने फिल्मों में अपने रोल काफी सीरियसली चूज किए, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी मजाक और फन लविंग पर्सन है। हालांकि इससे उनकी इंटेलेक्चुअलिटी कम नहीं होती। छोटे नवाब संजीदा किताबें भी पढ़ते हैं और आसपास जैसे लोग हों उनसे वैसी ही बातें कर लेते हैं, उसी हिसाब में ढल जाते हैं। एक ऐसी चिटचैट के दौरान उनसे पूछा गया था कि अपने 90s के रोल्स और फिल्म्स में से सबसे अजीब उन्हें क्या याद है, और उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आइए, मैं बताऊंगा आपको। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल कर रहा हूँ, मैं हूँ आपके साथ समर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान साहब की। ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी। हालांकि कहानी और सफर अभी भी जारी है उनका, लेकिन उनके अब तक के सफर से हम कुछ चीजें चुनकर आप तक लाए हैं। देखिए, आजकल वो अपने रोल्स बहुत सोच समझ कर करते हैं, ये उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। अपने 90s के सफर को देखते हैं तो खुद ही हंसी और अफसोस जैसे दो इमोशंस के बीच में डूब जाते हैं। ऐसे ही उनका एक गाना है फिल्म यार गद्दार से, ये वाला।

रैप सॉन्ग कहें या रेड सॉन्ग, ओह माय गॉड, सैफ का अफसोस बिल्कुल सही है। इस गाने को सुनकर और देखकर लग ही जाता है। खैर वो सब शायद उस वक्त का तकाजा था। इवन एक और फिल्म जिसके लिए उन्होंने काफी रिग्रेट किया, इवन पब्लिकली भी कह दिया था कि उन्हें पछतावा है, और ये फिल्म थी साजिद खान की हम शक्ल्स। उन्होंने कहा था कि उन्हें आज तक दुख है कि उन्होंने ये फिल्म क्यों की, और तब उन्होंने ये ठान लिया था कि अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब जब अपनी पसंद की फ्रीडम है, तब तो आप देख ही रहे होंगे सैफ ओटीटी पर आने से भी नहीं हिचकिचाए, वो भी तब जब कोई फिल्म स्टार ऐसा नहीं कर रहा था। और सेक्रेट गेम्स ने जो गेम पलटा, हर कोई कहने लगा वाओ। वेल यहाँ एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं सैफ अली खान नवाबी घराने से ताल्लुक रखते हैं, बचपन भी ऐसे ही बीता उनका। इधर एक ट्रेंड रहा है कि दुनिया भर में बॉलीवुड के फैंस और रईस कलाकारों को मुबारक मौकों पर अपने यहाँ बुलाते हैं, ताकि मेहमानों के सामने थोड़ी उनकी शान बढ़ जाए, हैं? उनकी बात बन जाए। उनके चहेते स्टार को अपने यहाँ डांस वांस करवा लेते हैं, वो खुद भी खुश हो जाते हैं और उनके मेहमान भी खुश हो जाते हैं। ये हमारे स्टार्स के लिए कमाई का जरिया भी है। ऐसे एक किसी मौके पर सैफ भी गए लंदन में दुबई के किसी शेख के यहाँ, क्योंकि उनकी बेटी को बॉलीवुड फिल्मों का बड़ा शौक था। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सैफ की फिल्मों के कुछ गाने सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
8: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपका एक बार फिर से कर रहा हूं इस्तकबाल. दोनों बाहें फैलाकर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स. मैं आज सैफ साहब की कहानी सुना रहा हूं और सैफ साहब लंदन पहुंच गए हैं एक शेख की बेटी की शादी में. और उनको ये बुलावा इसलिए भेजा गया था क्योंकि शेख साहब की बेटी सैफ की बहुत बड़ी फैन थी. अब वो होंगे शेख, सैफ भी तो छोटे नवाब हैं. वहां एक बड़ी और एक छोटी कुर्सी रखी थी. अब नवाबी नाजो नखरों के आदि सैफ बड़ी कुर्सी पर जा बैठे. वहां खड़े एक व्यक्ति ने इशारा करके दिखाया कि जनाब छोटी कुर्सी आपके लिए, बड़ी कुर्सी खाली कीजिए. कुछ देर बाद एक छोटी लड़की आई जो शेख की बेटी थी, वो बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और फिर कुछ देर बाद उसी कुर्सी पर सैफ के साथ फोटो खिंचाई. और बदले में सैफ को एक गिफ्ट मिला और वो थी एक चमचमाती सोने की रोलेक्स घड़ी जो असली हीरों से थी जड़ी. ये बात अलग है कि सैफ अली खान साहब ने इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया. अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो तो हमेशा चर्चा में रहे ही हैं, अपनी शादी को लेकर खास तौर से. जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने से 12-13 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी कर ली थी और उन्होंने इसके बाद अपने से बहुत छोटी करीना कपूर से शादी कर ली. अमृता सिंह से उनकी पहली मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी और उन दिनों सैफ अपने करियर के स्ट्रगल पीरियड में थे और अमृता इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी. अमृता और सैफ एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे. अमृता सैफ के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनके साथ साल 1991 में शादी कर ली थी. 1991 में उनके दो बच्चे हैं, सारा और इब्राहिम. इसके बाद उन्होंने करीना कपूर से शादी की और उनसे भी उनके दो बच्चे हैं, तैमूर और जहांगीर. पहले यहाँ एक और ब्रेक ले लेते हैं, सैफ अली खान साहब की बातें आगे भी होंगी, आज की आखिरी मुलाकात भी तो करनी है आपसे. सुनते रहिए और कुछ कहना है तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर कहिएगा. मैं हूँ जमर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मसी 24/7 लाइव पर.

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
3: कहते हैं सैफ अली खान साहब का करियर है किसी साइन वेव के ग्राफ की तरह, कुछ फ्लॉप्स कुछ हिट्स कुछ फ्लॉप्स, बस ऐसे चलता रहा। 1992 में परंपरा के बाद ये दिल लगी, लंबे बालों वाला विकी, साल 1994। इसके गाने 90s के सुपरहिट गानों में शुमार होते हैं। ये वही साल था जब सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी थी। बड़ा कठिन संघर्ष शुरू हो चुका था। इसी साल आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इन फिल्मों के जरिए सैफ आए तो सही, मगर स्पेस बनाना मुश्किल रहा उनको। फिर जैसे मैंने कहा आपको कि दिल चाहता है कल हो ना हो ओमकारा में वापस भी आए, पर साथ साथ कई फिल्में फ्लॉप भी रहीं, जैसे हम शक्ल्स, गो गोवा गॉन, एजेंट विनोद, ये सब बहुत बुरी तरह से पिटी। वैसे भी उनका सफर जारी है, इसलिए मैं शो को वाइंड अप ऐसे नहीं करना चाहता जैसे उनका सफर खत्म हो गया हो। OTT प्लेटफॉर्म पर हम नई नई सीरीज और फिल्मों में उन्हें देख रहे हैं। आपको उनकी कौन सी फिल्म बहुत पसंद है आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपकी पसंद का। लिख सकते हैं आप मुझे रेडियो मस्ती के फेसबुक पेज पर आकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सैफ को ना पढ़ने का बड़ा शौक है, साथ में अच्छा खाना मिल जाए और अच्छी वाइन उन्हें बहुत लुभाती है। अभी और बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे बेटर म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, साथ ही साथ गुड और प्रोग्रेसिव फिल्म्स करना चाहते हैं। बाकी कूल तो वो है ही, और आई विश वो रहे सेफ एंड साउंड एंड ऑफ कोर्स सेफ भी, ऑफ कोर्स वो बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि ये सुनकर वो कहेंगे वाओ। चलिए फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद रखें, याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। आपसे मिलूंगा मैं यहीं पर, यह रेडियो 24/7 लाइव, मैं हूं समर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: Welcome the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi with Jyoti Store and Flower Shop at 21 Cuff Road. Choose from a vast variety of decorative and eco-friendly Ganpati idols, rangoli powder with stencils, thalis, rudraksha and all other puja requirements as the festivities begin. You can also order your Ganesh idol online. Just log on to www.jyoti.com.sg. For more info, call 633-87008. Jyoti Stores and Flower Shop, a must visit this festive season.
1: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jati hain. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल्स.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हेलो हाय वेलकम नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 पर शुरू हो चुका है डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपके अंतरा यहां पर आपके साथ बिल्कुल जुड़ते हुए। एंड यस, मस्ती मीडिया 24/7। अगर आप ऐप स्टोर में जाकर हमारा देखेंगे तो नाम बदल कर कुछ ऐसा हो गया है, एंड रेडियो मस्ती 24/7 ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, सुना होगा आपने। सो वेल, गोइंग विद दैट, अब आप बताइए कि आप आज कैसे हैं। नहीं, वो आई एम गुड, ऑल गुड ऑल गुड, ये वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली कैसे हैं? थोड़े टायर्ड, किसी बात से इरिटेटेड, किसी को मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा हुआ है, या किसी को कुछ बहुत अच्छी चीज बताने का मन कर रहा है, या सब कुछ टेक्निकली ठीक है फिर भी पता नहीं क्यों दिल में थोड़ा सा मैं ऐसा वाला फीलिंग है। यू नो, हम दिन भर में पता नहीं कितनी बार ये पूछते हैं हाउ आर यू, और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली जवाब ही मिलता है गुड, एंड यू गुड, ऑल गुड, बस वहां पर कॉन्वर्सेशन ओवर। कभी कभी मुझे लगता है दुनिया में हाउ आर यू पूछने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आंसर एक्चुअली सुनने वाले थोड़े कम, एंड दैट इज वेयर वी कम इन। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आप सुन रहे हो, मैं हूं आपकी अंतरा, एंड धीरे धीरे करके यहां पर हमारी नुपुर रेणुका एंड हमारे साथ हमारे संघर्ष साथी श्रीधर भी जुड़ते हुए जाएंगे। और अगले 3 घंटे के लिए अगर आपके पास किसी हाउ आर यू का ऑनेस्ट आंसर है ना, तो हम सुनेंगे। यहाँ आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं है कि आप कंफ्यूज है, कोई नहीं, लिख दीजिए हमें। किसी से गुस्सा है और पता नहीं गुस्सा जस्टिफाइड है या नहीं, वो भी हमें लिख दीजिए। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप का इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, या बस मन में एक सवाल है, एम आई द ओनली वन हु फील्स लाइक दिस। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम पहले गूगल से और अब चैट जीपीटी से पूछते हैं, बट हम कह रहे हैं आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम सुनेंगे। सेंड इट टू अस, राइट टू अस, बिकॉज यहाँ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन है, वो भी जरूरी नहीं है। आप हमारे लिए बस डियर लिसनर, और हम आपके लिए डियर मस्ती, रियल पीपल, रियल सिचुएशंस एंड कॉन्वर्सेशंस जो

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऑप्शन ए चुने या ऑप्शन बी चुने, देखो चूज करना आपके हाथों में है और चूज करने के बाद उसको बार बार चूज करना भी आपके हाथों में है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कई बार ना मुझे बातें करते करते आपके सवालों में आपके जवाब मिल जाते हैं। यू वोंट बिलीव, अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है उन्होंने पता है मुझे क्या लिख कर भेजा है कि नुपुर मेरे पास दो सिचुएशंस अगर हैं कि एक पहला रास्ता जो कि गलत है और उसे चूज करके मैं अगर खुश रह सकती हूँ तो मुझे वो चूज करना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता जो कि सही है और उसे चूज करके मैं दुखी रह सकती हूँ मुझे वो चूज करना चाहिए। मैंने अपने मन में तो डिसीजन बना लिया है, फिर भी तुम मुझे बताओ। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बोलूंगी आप अपना ये लेटर के जो शब्द है ना वो दोबारा पढ़िए। सही और गलत का मतलब आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हो, एंड दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि तुम गलत रास्ता ऑप्ट करो, नो मैटर व्हाट, आगे जाके खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, व्हाट एवर द पॉइंट इज, है ना। सो मैं कह रही हूँ आगे का फिल्टर रहने दो, खुश रहोगे, बुरा लगेगा, क्या होगा, सही या गलत में क्या चूज करना चाहिए, दैट इज सही, वो अगर आप ऑप्ट कर लोगे ना सो बाय द टाइम चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, मन में रिग्रेट नहीं रहेगी। और अगर आपके मन में रिग्रेट जैसी सिचुएशन आ रही है ना तभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, तभी ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। डेफिनेटली ऐसे ही सवाल और जवाबों का सिलसिला लगातार है।

बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
3: भाई की डन है मम्मा।
4: ड्यूटी
5: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
4: मैं उठता था।
2: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: Oh, I hate making love songs.
1: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
2: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7. मैं हूं आपकी आंत्रा, यहां पर आपके साथ वापस से जुड़ चुकी हूं और चलिए साथ में हमारी अगली चिट्ठी को पढ़ते हैं. इन्होंने लिखा है, डियर मस्ती, मैं अपनी मामा को बहुत कुछ बताती हूँ, इनफैक्ट सब कुछ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बात मैं उन्हें बताती हूँ समहाउ इवेंचुअली पूरे खानदान को पता चल जाती है. और जब मैं उनसे कहती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, तो मम्मी का स्टैंडर्ड आंसर होता है कि अरे अपने ही तो है ना बेटा. अब मैंने उन्हें काफी सारा कुछ बताना कम कर दिया है और मम्मी को लगता है कि मैं उनसे दूर हो रही हूँ. How do I explain to her that wanting privacy doesn't mean I love her any less? So my dear listener, मुझे लगता है कि for you, like मम्मी को बताया means I trusted this information with you. मम्मी के लिए maybe अपने ही तो है means like family के बीच में privacy कैसी. और interestingly अपनी अपनी जगह आप दोनों अपनी बातों को लॉजिकल प्रूव भी कर रहे हैं कि उस हिसाब से तो हम सही कह रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मम्मी से ये कॉन्वर्सेशन उस वक्त मत करिए जब आपको अभी अभी पता चला हो कि उन्होंने कोई बात शेयर कर दी, बिकॉज आप गुस्से में होंगे. नॉट दिस एग्जैक्ट सिचुएशन बट काइंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड वंस विद माई मदर. पहले जो है बहुत पहले की बात है एंड मैं सीधा लड़ जाती थी उनसे एंड बहुत हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी एंड आर्ग्यूमेंट्स होती थी बिकॉज जब पता चलता था एंड इट वॉज लाइक कि ऐसा हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. शी हैड हर ओन कम बैक्स एंड एवरीथिंग एंड समहाउ नाउ व्हेन वी मीट एंड वी हैव अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन ऑल टुगेदर एंड कामली मैं उनको बताती हूँ, पता है उस टाइम पे आपने ऐसा किया था और कभी कभी आप ऐसी चीज़ें कर देते थे ना, तो मुझे तो बड़ा ही ऐसा लगता था वैसा लगता था. एंड हर लिसनिंग कैपेसिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम थिंग हैज चेंज्ड. सो ऑल्सो टाइम चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, नेवर हैव एनी, जस्ट नॉट इन दिस रिलेशनशिप, नेवर एवर हैव एनी काइंड ऑफ डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. किसी डिसीजन पे जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जो है हीटेड अप हो रखा हो, कभी मत पहुँचे, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट. इट इज वेन यू काम योर सेल्फ डाउन एंड देन हैव अ क्लियर कॉन्वर्सेशन, दैट इज वेन यू विल स्टार्ट सींग द डिफरेंस. So, well, maybe you can, just have a clearer conversation, a calm one, ki aapne phir bhi apni koi baat kahi and tell her, mama, agar main specifically bolu isi baat pe that this stays between us, iska matlab hai literally between us. And iske baad bhi agar if she says that apne hi to hai, so aap pyar se kaho ki haan apne hai but meri baat hai, to kisko pata chalega ye choose karne ka haq bhi mera hi hona chahiye, hai na. So, इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में आपने उनको बड़ा क्लियरली समझा दिया, राइट. एंड जो इन्फॉर्मेशन कभी कभी ये भी कर सकते हो कि जेन्युइनली आप प्राइवेट रखना चाहती हैं, वो तब तक शेयर ना करें जब तक आपको ट्रस्ट ना हो कि इट इज गोइंग टू स्टे देयर. बिकॉज बाउंड्रीज का एक पार्ट दूसरे इंसान को बताना है कि हमें क्या चाहिए और दूसरा पार्ट खुद डिसाइड करना कि अगर वो नहीं हो रहा है सो वॉट I can do differently, है ना? And also at the same time कि इस बात का guilt भी I don't want you to carry कि मैं मम्मी से सब share नहीं करती, मतलब हम close नहीं हैं. We can love somebody deeply and still not give access to every single part of our life. Privacy is not secrecy and privacy is definitely not rejection. So assess the situation and take a wise call. I really hope this helps. ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, रिलेशनशिप्स ऐसे ही मच्योर होते हैं. माय डियर लिसनर, दिस इज डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हाय, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ये जवाब मन में भी चल रहा हो ना, तभी अच्छा है। बाहर से तो दिखावा हर कोई कर लेता है। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे रुपर के साथ हैं आप। एंड ऑफकोर्स आपका जो लेटर है वो मुझे कई बार ना सवालों के बीच खड़ा कर देता है। ऐसे सवाल जो शायद मुझे भी खुद से पूछने चाहिए। हाँ फिलहाल अभी जो मेरे हाथों में लेटर है उसमें लिखा हुआ है, डियर मस्ती दिल से, मैं ना सोशली अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ और मेरी जो हॉबीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैं बस घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे वीडियो गेम खेलता रहता हूँ, वेब सीरीज देखता रहता हूँ, WFH करता रहता हूँ एंड शायद 3 से 4 दिनों में एक बार ही घर से बाहर निकलता हूँ। सो मेरी लाइफ यहीं तक रह गई है। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। मतलब सोशली अंडर कॉन्फिडेंट होने का मतलब और क्या हो सकता है? ठीक है, आपका एक पर्सनल नेचर है, आपको उसे बदलना भी नहीं है, पर आप उसको कहाँ दे रहे हो यार? वेब सीरीज देख रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब कुल मिलाकर आप ना अपने आप को अपस्किल भी नहीं कर रहे हो। मैंने कभी भी शो पर नहीं बोला है कि आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो, सोशल टाइप पर्सन नहीं हो, चार दीवारी के अंदर रहने वाले शख्स हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ नहीं हो सकती है। हाँ, सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ग्रो करो, है ना, लर्न समथिंग, है ना, और दुनिया के बारे में जानो, इंटरेस्ट जगाओ और उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप लो, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपका जन्म सिर्फ एक ही 2BHK फ्लैट या ड्यूप्लेक्स में रहने के लिए नहीं हुआ है। गॉट इट? डियर मस्ती दिल से।
2: जिस तरह तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे।
1: बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत गाने चलते रहेंगे मेरी जान, मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ। डोंट गो एनीवेयर।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: डियर मस्ती दिल से, आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7। यस, ये वही ऐप है जिसका नाम अब मस्ती मीडिया 24/7 हो चुका है। इफ यू गो टू द प्ले स्टोर एंड चेक इट आउट। वेल, मैं हूँ आपकी आंत्रा यहाँ पर, एंड चलिए अगली चिट्ठी की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। डियर मस्ती, रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया और मुझे नहीं बुलाया। There could be perfectly innocent reason behind it, I know that. But social media पर उनकी pictures देखी तो honestly बुरा लगा। अब वो सब मेरे साथ बिल्कुल normally behave कर रहे हैं और मैं भी normal हूँ। But somewhere it is still bothering me. Should I ये hurt? Should I discuss it? या छोटी-छोटी बातों को discuss करके हम friendships को unnecessarily complicated बना देते हैं। Wow. This is something to think about actually. So my dear listener, नहीं, मुझे नहीं लगता every single hurt needs a meeting or an explanation या फिर एक closure. कभी friend ने message का tone थोड़ा weird रखा, कभी किसी ने call back नहीं किया, कभी plan बना और आपको नहीं पूछा, हर चीज पर we need to talk करेंगे तो friendship HR department type feel होने लगेगी। But इसका ऑपोजिट भी हेल्दी नहीं है कि हर बार छोड़ो यार क्या ही बोलना कहकर वो बात अपने अंदर रखना। तो सवाल ये उठता है कि डिसाइड कैसे करें, राइट? सो मैं ऐसे सिचुएशन में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जेन्युइनली इसे लेट गो कर सकती हूँ? दैट्स व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, नॉट प्रिटेंड टू लेट गो, ओके? एक्चुअली लेट गो। कल वही फ्रेंड्स मिलेंगे तो क्या मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगी या अंदर से आई विल बी अ लिटिल कोल्ड? क्या नेक्स्ट प्लान में जाकर भी मेरा माइंड यही इसी बात पे चलेगा कि हाँ हाँ पिछली बार तो तुमने मुझे बुलाया ही नहीं था, जस्ट लाइक दैट? क्या मैं उनके किसी कंप्लीटली अनरिलेटेड बात को भी उसी हर्ट के लेंस से देखने लगूंगी? अगर आंसर है नो, इट जेन्युइनली देन डजंट मैटर एनी मोर, then just leave it and let it go. Every emotion needs acknowledgement, but every emotion doesn't necessarily need confrontation. लेकिन अगर आप notice कर रहे हैं कि हर बात पर बार-बार दिमाग में आ रहा है, then my dear listener, maybe it was not that small for you. और तब I think पूछ लेना complication नहीं है, but पूछने का तरीका difference create करेगा। तुम लोगों ने मुझे क्यों exclude किया? इससे सामने वाला ना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन से डिफेंसिव बड़े हो जाते हैं। एंड

में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक बार हुआ ओके ऑब्जर्व, बार बार आप ही लेफ्ट आउट हो रहे हैं, देन मे बी कॉन्वर्सेशन सिर्फ उस एक डिनर के बारे में नहीं है, मे बी फ्रेंडशिप का इक्वेशन चेंज हो रहा है और उसे ऑनेस्टली देखना जरूरी है। सो माय डियर लिसनर, अच्छी फ्रेंडशिप्स वो नहीं होती जहां कभी हर्ट ही ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छी फ्रेंडशिप शायद वो होती है जहां आपको इतनी सेफ्टी हो कि जरूरत पड़ने पर आप ये कह सको कि यार वो बात तुम्हारी मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। But well, I really, really hope this helps. Because sometimes one honest 5 minutes ka conversation saves you from 5 weeks of overthinking. Yeh hai Masti, Dil Se on Radio Masti 24/7.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है। आप जिस रंग के सनग्लासेस पहनते हैं ना, पूरी दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है मेरे बॉस। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपर आपके साथ। और अभी जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है ना, उन्होंने शायद सैड, मायूसी, परेशान, हार्ट ब्रेकिंग, नेगेटिविटी का चश्मा पहना हुआ है। डेफिनेटली इसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो अपनी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा सैड है। तो मैं अब अपनी टीनेज ग्रुप में आ गई हूँ और मैं अपनी लाइफ का पहला रिलेशनशिप भी बनाने से पहले 100 बार सोच रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं हैं। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उनसे मैं पूछना चाहूँगी, रियली यार? देखो, ये बातें समझने के लिए आपकी एज थोड़ी छोटी है, बट स्टिल अगर आप इन चीज़ों को लेकर सैड फील कर रही हो ना कि आपके आसपास रिलेशनशिप में सब बुरे चल रहा है, सब कुछ खराब है, तो आप ना अपने करियर को लेकर भी सैड फील करोगे, आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी खराब फील करोगे, आप दोस्तों के साथ जो रिश्ता रखोगे ना उसमें भी सैड फील करोगे। तो जो एक जगह सिचुएशन आती है ना वो वाइसी वर्सा सब जगह रिफ्लेक्ट करने लगती है। सबसे पहले थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, अपने मम्मी पापा को देखो यार, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, राइट? सो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ो और जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: बिल्कुल, होते होते प्यारे प्यारे गाने डियर मस्ती दिल से शो पर चल रहे हैं मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।

आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी अंतरा। और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई इंसान बदल गया है ना, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रोल बदल गया है और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये नए रोल में पुराने रिलेशनशिप को कहाँ पे रखें। मुझे ये थॉट इसलिए आया बिकॉज हमारी अगली चिट्ठी जो है कुछ इसी से रिलेटेड है। डियर मस्ती, वो कहते हैं कि मेरी कलीग और मैं काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, ऑफिस में साथ लंच कॉफी गॉसिप एवरीथिंग वी डिड टुगेदर। रिसेंटली शी गॉट प्रमोटेड, नाउ शी इज माय मैनेजर। सिंस देन शी हैज बिकम वेरी फॉर्मल विद मी एट वर्क। कॉन्वर्सेशंस मोस्टली काम तक लिमिटेड है एंड वो पहले वाली वॉर्म्थ मुझे फील नहीं होती। आई अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स टू बी प्रोफेशनल बट समवेयर आई कांट हेल्प फीलिंग दैट शी हैज चेंज्ड। एम आई बीइंग अनफेयर? So, my dear listener, unfair, maybe थोड़ा सा, wrong, maybe not, because आप जो miss कर रहे हैं वो designation नहीं है, आप अपनी friend को miss कर रहे हैं, and that's understandable, लेकिन एक बार situation को उनकी chair पे बैठकर भी देखते हैं, right? कल तक she was your colleague, आज suddenly she has to manage you, maybe review your work, correct you, make decisions affecting you, maybe कभी आपको नो भी उनको कहना पड़े, डांटना पड़ जाए, एंड साइमल्टेनियसली उन्हें ऑफिस के दूसरे लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस देना है कि बिकॉज यू टू आर फ्रेंड्स यू आर नॉट गेटिंग प्रेफरेंशियल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ ट्रिकी पोजिशन। हो सकता है जो आपको शी हैज चेंज टाइप फीलिंग लग रही है वो उनकी तरफ से आई नीड टू बी वेरी केयरफुल वाली फीलिंग हो। समटाइम्स प्रोफेशनलिज्म लुक्स लाइक अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड, तो मैं immediately friendship को judge करने को तो नहीं कहूंगी। Workplace के बाहर देखिए, क्या वो अब भी message करती हैं? क्या वो अब भी आपसे coffee के लिए मिलती हैं? क्या personal conversations अब भी हैं? अगर yes, then perhaps friendship गई नहीं है, बस office में उसकी boundaries change हो गई है। And actually that might be healthier for the both of you, trust me on that. Because imagine the opposite situation. अगर वो office में भी आपके साथ exactly पहले जैसे behave करे, extra friendly हो, हर वक्त आपके साथ हो, कल कोई और colleague आकर ये कह सकता है कि of course, ये भाई इसको तो preference मिलेगी ही, दोस्त जो ठहरे, है ना? और फिर problem आप दोनों के लिए create होगी। But having said that, अगर आपको लगता है कि distance सिर्फ workplace तक limited नहीं है, she has completely withdrawn personally too, and it's genuinely bothering you, then talk. But again, tone matters, right? Promotion के बाद तुम तो बदल गई हो। No. Because that sounds like judgment. Maybe I completely understand that our work dynamic जो है, it has changed, and I respect that. बस कभी-कभी मुझे हमारी friendship miss होती है, so I wanted to just quickly check that. You're okay, right? That's it. Give her some room to tell you what she is navigating to. हो सकता है, my dear listener, वो भी घर जाकर किसी को ये कह रही हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्ती को मैनेज कैसे करूं विदाउट मेकिंग थिंग्स ऑकवर्ड। हम अक्सर ना अपनी साइड का डिस्कम्फर्ट इतना क्लियरली फील करते हैं कि सामने वाला का डिस्कम्फर्ट हमें दिखाई नहीं देता। एंड प्लीज फ्रेंडशिप प्रूव करने के लिए उनसे वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। एक्चुअली अगर वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, मेक हर न्यू जॉब इजियर, मे बी नॉट हार्डर। वर्क में लेट हर बी योर मैनेजर, आउटसाइड वर्क गिव द फ्रेंडशिप अ चांस टू फाइंड अपना एक नया रिदम। आई होप रियली दिस हेल्प्स। बिफोर डिसाइडिंग दैट शी हैज चेंज्ड, गिव बोथ ऑफ यू अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट टू व्हाट चेंज्ड अराउंड यू। यह जिया मस्ती दिल से सुनते रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड।

डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
5: दुनिया में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता। पहली बात, हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, हमने एक अपना स्केलिंग प्रोफार्मा बनाया हुआ है, उस पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो सही है वरना गलत है। तो मैं किसी को पर्सनली टिप्पणी नहीं दे रही हूँ। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है हेलो डियर मस्ती। मैं पूछना चाहूंगी कि किसी भी शख्स में रेड फ्लैग क्या होता है? तो सबसे पहली बात, ये जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, पर हाँ पहले भी हम अच्छा या बुरा इंसान ढूंढते थे ना, तो अच्छा मींस अब एक कैटेगरी कर दी गई है ग्रीन फ्लैग की, बुरा इंसान मतलब रेड फ्लैग। तो इन टर्म्स पे ना जाते हुए मेरे सिंपल तीन रूल्स हैं जिनका आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब इन एनीथिंग। ओके, सो नंबर वन इज कि आपका वो चाहे दोस्त हो या पार्टनर हो, वो चाहे दुश्मन हो, आपका कलीग हो, आपका कह सकते हैं कुछ भी हो यार, नेबर हो यार, बस वो झूठ ना बोलता हो, ठीक है। जो झूठ नहीं बोलता है ना वो शख्स सबसे ज्यादा दिल का साफ होता है, बहुत बड़ा फिल्टर है, राइट। एंड नंबर टू इज कि जब आप सामने वाले से कुछ डिस्कस करने बैठे तो वो उस टॉपिक को बार बार पोस्टपोन ना कर रहा हो, मतलब एटलीस्ट मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन चल रही हो, राइट। नंबर थ्री, आपका सुख जो है मतलब आपका जो ग्लोरिफिकेशन है ना वो तो सामने वाला शख्स समझ लेता है कि हाँ सब अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एक लो फेज आए उसमें वो आपका साथ ना दे तो बस तभी टाटा बाय सी यू कर लीजिए उससे, आप लाइफ में उतने ज्यादा खुश रहोगे।

आज तो पता ही नहीं चला कीटिया मस्ती दिल से, पर हम फिर उस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर कहना पड़ता है इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप अनदर एपिसोड। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे थे टियर मस्ती दिल से। आज के लेटर्स के बारे में

सोच रही थी और नुपुर को सुना, रेणुका को सुना, देन हमारे संघर्ष साथी श्रीधर को भी सुना. कभी भी आपको कोई बात बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे, फील फ्री टू जस्ट राइट टू अस 9151896 पर. और मैं ये भी सोच रही थी कि लाइफ की मैक्सिमम सिचुएशंस ब्लैक एंड व्हाइट होती ही नहीं है, नेवर, राइट? एक तरफ आपको लगता है कि मम्मी को सब बता सकते हैं बिकॉज शी इज योर सेफ स्पेस, दूसरी तरफ आपको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है. फ्रेंड्स ने एक प्लान आपके बिना बना लिया, हो सकता है कोई इनोसेंट रीजन हो, बट फिर भी कोई तो हर्ट हुआ ना. एंड आई थिंक दैट्स लाइफ. कभी कभी दो चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं. आप किसी से बहुत प्यार कर सकते हैं एंड स्टिल नीड अ बाउंड्री विद देम. आप किसी की इंटेंशन समझ सकते हैं एंड स्टिल एक्नॉलेज दैट देयर एक्शन हैज काइंड ऑफ हर्ट यू. शायद इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हर सिचुएशन का परफेक्ट आंसर ढूंढना नहीं है. मे बी इट्स लर्निंग टू से दैट आई अंडरस्टैंड योर साइड बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माइन. और मुझे लगता है कि हम अक्सर यही सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, दूसरों को समझते समझते खुद को डिसमिस कर देते हैं या फिर खुद के हर्ट में इतने उलझ जाते हैं कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखना भूल जाते हैं. बैलेंस शायद बीच में कहीं तो है. फील व्हाट यू फील, आस्क व्हाट यू नीड टू आस्क, से व्हाट नीड्स टू बी सेड एंड व्हेरेवर पॉसिबल लीव अ लिटिल रूम फॉर अनदर पर्सपेक्टिव. That's what we try to do in every week is show dear masti dil se par. आप अपने लेटर भेजते, हम उसे जज करने के लिए नहीं, थोड़ा सा अनपैक करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं. कभी कभी हमारी बात आपको सही लगेगी, कभी आप कहेंगे कि नहीं ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता या करती. एंड दैट्स ओके टू बिकॉज दिस शो इज नॉट अबाउट टेलिंग यू हाउ टू लिव योर लाइफ. इट्स जस्ट अबाउट कॉन्वर्सेशंस दैट होपफुली मेक यू स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड थिंक, ओके मे बी देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस. वेल, इसी के साथ जाते जाते बस इतना कहूंगी, हर बात को सॉल्व करना जरूरी नहीं, हर रिश्ता परफेक्ट होना जरूरी नहीं और हर फीलिंग को जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं. कभी कभी बस उसे समझ लेना और फिर थोड़ा सा लाइटर होके आगे बढ़ जाना, दैट इज इनफ टू. मैं अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ नुपुर एंड रेणुका, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर स्टोरीज एंड स्पेंडिंग दीज 3 आवर्स विद अस. फिर मिलेंगे अगले डियर मस्ती दिल से के एक नए एपिसोड में. टिल देन बी काइंड टू द पीपल बट अपने लिए थोड़ी काइंडनेस जरूर बचाकर रखिए. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिस

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: वो, वो, वो,

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

उसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।

तस्वीर हटाई होगी है।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता तो

0: भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना।
1: हमें तो भाई सुबह सुबह जब हम ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर भाई का कौन सा गाना लगाएं तो सारे भाई भाई सामने आ रहे थे, मुन्ना भाई, बजरंगी भाई जान,
2: भाई जान।
3: Setting the perfect hot temperature for Friday. Musty madness with Renuka and Antara.
2: ये कैसा सिलसिला चलाया हुआ है। नो भाई भाई, इट इज फॉर एवरीबॉडी, चाहे कोई भी हो। इट इज द रक्षा द बंधन। हैप्पी रक्षा द बंधन रेणुका।
0: यस,
2: हैप्पी रक्षा द बंधन।
0: क्या तुम मेरी रक्षा करोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। करोगी
2: एक गी यस। We shall do that. और करते हुए आ ही रहे हैं, एटलीस्ट मेरे अकाउंट की रक्षा तो रेणु का काफी टाइम से कर रही है। पैसे आते रहना चाहिए ब्रो, पैसे आते रहने चाहिए।
1: बिल्कुल। सो जो भी पैसे देता है वो आज के दिन में भाई बनेगा। रेडियो मर्सी 24/7 पर कौन बनना चाहता है मेरा भाई यहाँ पर। लेकिन अगर आप मना रहे हैं अपने भाई बहन के साथ में रक्षाबंधन, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन में। आपकी जो आपका आपका जो रिश्ता है वो लंबा चले, खुशियों से चले। जब भाभियां आ जाए या जब जीजा जी आ जाए तो लड़ाइयां ना हो, और आपके बच्चे भी आपस में एक दूसरे को गालियां ना दे, और खुशी खुशी से कजन कजन बन के खेले। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ मैं कि नहीं?
2: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत विशेस मेरी तरफ से भी देते हुए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मस्ती में 24/7 सुनते रहो।
1: तो बस मौजा ही मौजा आज के दिन में शुरू होता है मस्ती मैडनेस। दिस इज फ्राइडे एंड ऑफ कोर्स दिस इज अंतरा और मेरा ये वाला शो जिसको आप सब छुप के सुनते हैं और बताता कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: कहते हैं ना, जिसका एक भाई नहीं उसके 50 भाई होते हैं, तो हम बस उसी वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे.
2: अरे ये राखी वाकी वाले भैया को थोड़ा सा साइड में रखो. लेट्स टॉक अबाउट द भैयास जो हमने ऑन द वे अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन वाले भैयास बनाए थे. विकी भैया, राहुल भैया, करण भैया. आज का दिन उनको भी समर्पित बिल्कुल करना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अरे मेरे केस में मेरा कोई भाई नहीं बनता था, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के भाई बनते थे. क्योंकि वो उनके भाई बनते थे तो फिर वो मेरे से बात कर सकते थे.

0: उनके दिमाग में भैया हमारे दिमाग में तो कुछ और ही।
1: आई नो सही भाई, मैं तो हमेशा से यही बोलती थी जब भी कोई टेढ़ा मेढ़ा एक आध भी चलता हुआ आ गया मेरे पास कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ, तो मैं बोलती भाई मेरे को तो भगवान ने भाई नहीं दिया, तू कौन होता है बनाने वाला, हम इंसानों की कहाँ औकात। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, हाउ मेनी भाईज हैव यू मेड अलोंग द वे, जरूर हमें बताओ, मतलब वी वुड लव टू नो दैट, राइट अंथरा, वोंट वी?
0: ऑफ कोर्स, absolutely, please बताना, हाँ बिल्कुल मत छुपाना, especially हमसे।
1: Girls like to swing, good morning.

0: crafts something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
2: ऑल इज वेल।
1: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: कान खोल के सुन लो ये खबर जो मैं देने वाली हूँ, कान खोल के सुन लो।
2: और क्या खोल के सुनता आदमी वैसे भी। And I hope she won't answer that. Good morning and welcome Radio Masti 24/7 पर। जी हमारे ऐप का नाम मस्ती मीडिया 24/7 है, पर हैं तो हम अभी भी रेडियो मस्ती 24/7 ही। क्या सुन रहे हैं आप? मस्ती मैडनेस।
1: जी हाँ, मस्ती मैडनेस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कान के साथ साथ वैसे तो खोलने को बहुत सारे लोग बहुत कुछ खोल के सुन सकते हैं, बट कमिंग बैक टू दिस 66 ईयर ओल्ड, हुआ कुछ ऐसा भाई साहब हमारे इनके साथ कि इन्होंने ना एक टाइम पर ईयर प्लग लगाए हुए थे किसी कारणवश, ठीक है। अब ईयर प्लग में उन्होंने एक कान का निकाला, दूसरे का वो निकालना भूल गए। ठीक है, अब क्या था कि इट एक्चुअली बिकेम लॉज्ड, इतना कान के अंदर घुस गया। और डॉक्टर ने जब मतलब ये गए कि मुझे ना कुछ कम सुनाई दे रहा है और ऑलमोस्ट सुनाई के नहीं बराबर दे रहा है, तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को भी नहीं मिला क्योंकि उसके ऊपर जो है ना ईयर वैक्स हार्डन होके एकदम जम सी गई थी, तो डॉक्टर को भी नहीं मिला कि अंदर कुछ ऐसा लॉज हो रखा है। इवेंचुअली अपने घर के एक बहुत कुछ सालों बाद, 5 साल तक बंदे ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब तो मैं डेफ हूं, मैं तो सुनाई नहीं देता है ना। सो ईयर कैमरा जो है किसी एक दिन चेक किया, उसने कहा ये क्या है, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया, पता चला कि वो 5 साल से वो ईयर प्लग निकालते ही उसको सब सुनाई देने लगा। बताओ,
3: 5 साल
1: 5 साल
3: 5 साल तक ईयर प्लग अंदर, मतलब ओके।
2: मतलब चले यानी झलिया बोलना चाहिए इस आदमी को। रेडियो मस्ती 24/7 पर। हाउ कैन यू हैव समथिंग इन योर ईयर फॉर 5 इयर्स? मतलब आप अपने किसी भी बॉडी के किसी भी होल में 5 साल तक कोई चीज परमानेंटली कैसे रख सकते हैं? क्यों भाई?
1: I am sure that he was happy निकालने के बाद। जब वो घर वापस गया होगा उसको लगा होगा कि भाई ये तो अंदर ही ठीक था।
2: खाली खाली फीलिंग होने लगी।

0: और रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर आप सभी का स्वागत यहाँ पर। और अगर आप सुन रहे हैं रिपीट शो, जी हाँ, अनकोर सुन रहे हैं, तो सैटरडे इवनिंग है और रक्षाबंधन कल था, क्योंकि बड़े सारे लोग हमें लिख देते हैं, जैसे कि हमने इंडिपेंडेंस डे का शो जब हमारा अनकोर चल रहा था, एंड देन पीपल आर राइटिंग क्या इंडिपेंडेंस डे दो दिन बाद सेलिब्रेट हो रहा है सिंगापुर में। तब हमें बोलना पड़ता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday. Musty Madness with Renuka and
0: जी बिल्कुल फ्राइडे है, अनुराग यादव की बात करने वाले हैं हम इस टाइम। अंतरा, अनुराग यादव को जानती हो तुम?
2: नहीं बट आप बताओगे तो जान जाओगे।
0: बिल्कुल एक दिल्ली के हैं ये, और इन्होंने जाकर ओबरॉय उदय विलास होटल में, मतलब जाके खूब ऐशे करी, ऐशे जिसे कहते हैं, ठीक है, और वहां से बिना कुछ पे किए निकल गए। अब आप बताइए, अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ में उन्होंने अगस्त 14 को वहां पर चेक इन किया और 23 तक रहे, और ओबरॉय उदय विलास इज लाइक अ ब्यूटीफुल होटल, राइट। और फिर उसके बाद 24 को जब वो बाहर निकले तो उन्होंने भाई स्टाफ को बोल दिया, मेरी तो ट्रैवल एजेंसी पे करेगी जिनके थ्रू हमने चेक इन किया है, तो वो निकल गए वहां से। लेकिन पैसा कहाँ है? होटल के मैनेजमेंट ने कहा कि ट्रैवल एजेंसी जो है मकर बहा ट्रैवल एजेंसी, उन्होंने कमरा तो बुक किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई डिस्काउंट ये वो कुछ स्पेशल चीज़ें, तो होटल ने सब मना कर दिया था। उसके बाद में आप सोचिए, इस वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल जहाँ पर रणबीर कपूर और दीपिका की ये जवानी है दीवानी भी वहीं पर फीचर करी गई थी, 50 एकड़, 200 साल पुराना एक हंटिंग ग्राउंड महाराणा ऑफ मेवाड़ का, और मतलब क्या क्या है वहाँ पर। अब उन्होंने जारी कर दिया FIR कि भाई साहब आप कैसे अनुराग यादव जी गायब हो सकते हैं बिना पे किए, आपके तो हम घर तक पहुंच जाएंगे। अब वो पड़े अनुराग यादव के पीछे, अनुराग यादव जी पड़े हैं ट्रैवल एजेंसी के पीछे, और बस बाकी हम इस न्यूज को बता रहे हैं।
2: मतलब मेरा सवाल है कि ऐसे चेकआउट कर सकता है कि मेरा पैसा ट्रैवल एजेंसी देगी बोल के चेकआउट कर ले, मतलब वो भी इतने बड़े होटल में हो सकता है ऐसा?
0: हाँ, आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट देयर प्रोसेसेस। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यस, एंड आई एग्री विद यू।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: भाई फोटो अच्छी आनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए, कितनी बार भी खींचो लेकिन जहां पर भी डालो फोटो अच्छी आनी
3: agree,
2: चाहिए.
3: Agree.
4: They make Friday mornings the funkiest and the
3: फोटो अच्छी आनी चाहिए. मतलब फोटो अच्छी नहीं आए तो दैट इज लाइक द बिगेस्ट क्राइम मैन. वीडियो मस्ती 24/7 पर. हां जी बताइए तो क्या खबर
2: है. हाँ, क्रिमिनल्स भी यही कह रहे हैं कि दिस इज द बिगेस्ट क्राइम. क्योंकि एक वांटेड आदमी ओहायो का, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ. डोनाल्ड प्यूग इसका नाम है, ठीक है. तो इसको ना वांटेड था फॉर स्किपिंग कोर्ट का अपीयरेंस एंड देन काफी सारे वैंडलिज्म वगैरह के इसके ऊपर केसेस चल रहे थे. तो इसका ना कोई पुराना ऐसा मगशॉट कभी लिया होगा तो वो वांटेड का जगह जगह पे उसकी फोटो जो है बांट रखी, बाहर पोस्टर्स पे वांटेड में उसकी शक्ल वो वाली लगा रखी. भाई को लग गया बुरा. इसने ईमेल किया कि देखो जो तुमने मगशॉट लगाया है मेरे फोटो का बहुत ही गंदा है, लाइक इट इज टेरेबल. अटैच्ड इज अ वेरी नाइस पिक्चर. उस पिक्चर में बिल्कुल सर एकदम अपने गाड़ी के अंदर शेड्स वेड्स लगाए, एकदम मतलब रैप्चरिक टाइप का एकदम कूल वाइब देते हुए. यूज दिस वन फॉर द वांटेड पिक्चर, प्लीज चेंज दैट, दैट्स लाइक टेरेबल.
3: भाई फोटो जरूरी है जैसा कि हमने कहा, बाकी सब ठीक है. भाई चाहे जवानी शीला की हो, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि फोटो में अच्छे से दिखे. वीडियो मस्ती 24/7 पर. भाई चोरों की भी इज्जत होती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आपको मिलते हैं अगले घंटे. वैसे हैप्पी रक्षाबंधन. कितने बजे आ रहे हैं भैया और कितने बजे जा रही हैं दीदियाँ लड़ाइयाँ कराने दूसरों के घरों में, जरूर बता देना.

0: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठा था
2: फूलों का तार।
3: विशिंग ऑल द सिबलिंग्स वर्ल्ड वाइड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
4: और 8 बजने के उस तरफ भी सभी बहनों को लाल लाल कपड़े और गोटा जरी वाले कपड़े, आज के दिन में लॉट्स ऑफ मिठाइयाँ और लॉट्स ऑफ पैसे मुबारक हों। जी हाँ बिल्कुल, ये है रक्षाबंधन और उसी की विशेष करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। एक भाई जो बहन बनने की कोशिश कर रहा है।
3: Setting the perfect hot temperature for Friday.
5: अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता कि हमारे मस्ती मैडनेस के खबरों के स्टैंडर्ड में कितना नीचे चला गया है ये, कि अब ये बात सुनकर ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि तो क्या हो गया।
4: हाँ भाई, तो भाई मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक जो 22 साल का आदमी है, 22 साल का लड़का, वो काफी वायरल हो गया है क्योंकि ही इज बीन कैट फिशिंग मैन विद फीट पिक्चर्स, क्योंकि वो अपने कॉलेज के पैसे देना चाहता है। सो बेसिकली तुम्हें तो पता ही है कि कुछ लोग ऑनलाइन जाके लड़कियों के पैरों की तस्वीरों को खरीदते हैं।
5: आजकल बहुत चल रहा है।
4: एग्जैक्टली, तो इसीलिए पेडिक्योर के खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि क्या है कि आप अगर फोटो में बेच बेच के अपने पैरों की आप पैसे कमा सकते हैं। तो भाई एक लड़के ने ये सोचा कि मेरी कॉलेज की एजुकेशन के पैसे निकल जाएंगे, तो उसने फीट फाइंडर पर गया, उसने अपना अकाउंट बनाया, फीमेल प्रोफाइल, एंड ही स्टार्टेड सेलिंग फोटोज ऑफ हिज फीट। वहां पे उसने अपने पैरों को शेव किया, मॉइस्चराइज किया, एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग एंगल से, और बहुत ही जल्दी उसके पास पेड रिक्वेस्ट आने लग गई, इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट फॉर तेरी पुरानी जुराबे दे दे हमको। हाय हाय, कितने ही घटिया किस्म की रिक्वेस्टें आती हैं, लेकिन